0: श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या, आज आप सुनेंगे 389। कलाकार हैं सुरेश वाडकर, संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड नंबर 389।

पुण्यात्मा काकभुशुंड के आश्रम पहुंचकर ही पक्षीराज गरुड़ का संशय, माया जनित मोह और भ्रम दूर हो गए थे। किंतु उनकी ये जिज्ञासा अवश्य बनी हुई थी कि ऐसा क्यों कर हुआ, ये भी कि काकभुशुंडी ने कौवे का शरीर और श्री रामचरित का अक्षुण भंडार कैसे और कहां पाया। उन्होंने अपनी ये जिज्ञासा काकभुशुंडी के सम्मुख प्रकट की। गरुड़ की ये जिज्ञासा सुनकर काकभुशुंडी हर्षित हुए और उन्होंने सविस्तार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। फिर ये भी बताया कि कौवे के शरीर वाले जन्म में ही उन्हें श्री राम की अखंड भक्ति के साथ साथ इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसी कारण कौवे के शरीर से उन्हें अत्यधिक प्रेम था और वे अपना ये शरीर त्यागने का विचार भी नहीं करते, क्योंकि ये वेद वर्णित सत्य है कि शरीर के अभाव में

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

श्रोताओं, जीवन में सफलता और असफलता हमारे जीवन की एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें हम आगे जाएं तो सफल और पीछे रह गए तो असफल हो जाते हैं। और इस भागदौड़ में असफलता और सफलता के इस दौर में इसे पाने के लिए, इसमें हार जाने के लिए हम हर वक्त कहीं ना कहीं अपने आप को कभी आगे महसूस करते हैं और कभी वहीं रहा हुआ महसूस करते हैं। जब भी असफल होते हैं तो ये समझते हैं कि हम काबिल नहीं हैं, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है जो इससे प्राप्त की जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इस बात को पहचानना है कि जब हम सफल हुए हैं किसी भी क्षेत्र में तो क्या हम पहली बार सफल हुए हैं। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में असफल हो रहे हैं उसमें तो हम अपना निर्णय सुना देते हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं, हम मेहनत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां जहां हम सफल होते हैं वहां हम भूल जाते हैं कि हमें ये सफलता एक बार में प्राप्त नहीं हुई है। कुछ असफलताओं के बाद ही सफलता का मिलना इस बात को बताता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये सफलता की ओर पहला कदम और सबसे बड़ी शिक्षक है। जो हमें असफलता सिखा सकती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। हर बार जब हम गिरते हैं तो फिर से उठकर चलने में और संभलना जो हम सीखते हैं वो असफलता से ही सीखते हैं। अपनी गलतियों को सुधारने में और नई योजनाएं बनाने में, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में हमें ये असफलताएं बहुत कुछ सिखाती है। ये समझने की कोशिश हमें करनी होगी कि हम दोबारा अगर खड़े हो रहे हैं तो बहुत कुछ सीख कर खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसा पहले दिन थे वैसे ही हैं। असफलता को एक हार के बजाय सीखने का एक अवसर हमें मानना चाहिए। जीवन में जो बड़ा लक्ष्य हमने प्राप्त करने की ठानी है उस बड़े लक्ष्य में छोटी छोटी सफलताओं को जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो वहां हमें आत्मविश्वास को इकट्ठा कर आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में सबसे सफल वही व्यक्ति है जो असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ता है। असफलताओं से सीखा हुआ व्यक्ति हमेशा अपनी आगे आने वाली सफलता में और सफलता मिलने के बाद के जीवन में बहुत अनुभव के साथ अपने जीवन को जीता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए।

0: इसको सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम नमस्कार शुरू में बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत देश के पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये राशि 2,000 की 3 समान किस्तों पर हर 4 महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। सालाना 6,000, प्रति किस्त 2,000 रुपए। ऐसा किसान परिवार जिसके पास कृषि योग्य भूमि हो, वे इसके लिए पात्र हैं। खेती से जुड़े छोटे मोटे खर्च जैसे बीज, खाद, सिंचाई आदि को पूरा करने में किसानों की मदद मिले, इसके लिए इसे रखा गया है। पात्र जो होंगे इसके लिए, वो आवेदनकर्ता के पास वैध कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। ये लाभ जो है वो केवल किसान परिवार को, उनकी पत्नी, जो पति है उनको, या नाबालिग बच्चों को ही मिलता है। संस्थागत किसान, मौजूदा या पूर्व संवैधानिक पद धारक और आयकर देने वाला किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। नई और भी नवीन अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। सरकार द्वारा हाल ही में 12वीं किस्त जारी की जा चुकी है और देश भर में करोड़ों जो किसान हैं वो 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी किस्त खाते में आएगी या नहीं, आपका EKYC लैंड सीडिंग और आधार बैंक सीडिंग का पूरा होना अनिवार्य है।

0: हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी देते हैं पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन, इससे संबंधित। प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से के वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। इसके तहत तकनीकी शिक्षा और कौशल उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया है ताकि युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा सके। श्रोताओं, संस्थाओं की स्थापना की अगर बात करें तो इसका अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI और पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। मौजूदा तकनीकी संस्थानों के उन्नयन को इनके उन्नयन को और आगे उन्हें उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में विकसित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के तहत कई विशेष योजनाएं लागू की गई है, जिनमें सीखो और कमाओ, अल्पसंख्यक युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार आधुनिक और पारंपरिक कौशल प्रदान करके रोजगार से जोड़ना, नई मंजिल, स्कूल छोड़ चुके युवाओं को शिक्षा के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण देना, उस्ताद, अल्पसंख्यक कारीगरों और शिल्पकारों की पारंपरिक कलाओं का संरक्षण करना और उनके कौशल को उन्नयन करना है। इसके लिए लाभ और जो इसके लिए सरकारी योजना और पहलों के लक्ष्यों को और बजट का जो 15% हिस्सा है वो अधिसूचित अल्पसंख्यक समूह

ध्यान करना और खुश रहने की आदत हमेशा अपने अंदर बरकरार रखना, ये सभी हमारी सेहत के लिए जरूरी है। और अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हमारी दिनचर्या, साथ ही हमारा जीवन, हमारे जीवन में जिन लक्ष्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य प्राकृतिक तौर पर ही हमारे पास आ जाते हैं। क्योंकि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उस कार्य में हम अपनी पूरी ताकत जब लगाते हैं तो उसमें सफलता तय है। और अगर पूरी ताकत लगानी है तो स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सेहत अच्छी तो सब

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चोरू। ये आकाशवाणी का चोरू केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
5: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
6: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
7: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई है। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुँचाया जाएगा।
5: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
8: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ

0: की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
1: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जागृति। ऐसा यार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, ऐसा यार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा ऐसा यार। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जाँच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: अंतराल के बाद सभी श्रोताओं का फिर स्वागत है सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पंकज दास की गायी हुई गजलें।

इस गजल के साथ ही श्रोताओं, सुर संगम का सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46 के पार। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों में रेलवे, विद्युत और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। ये आयोजन खरीफ के मौसम की तैयारियों, कृषि उत्पादकता, मौसम की मार से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल खेती, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन उत्पादन, डिजिटल कृषि और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। मुख्य काजी खालिद उस्मानी ने सभी नागरिकों से त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी त्योहार का उत्साह देखा जा रहा है। भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर यह त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने नमाज के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये त्योहार नागरिकों को मानवता और विशेषकर वंचितों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं देते हुए सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी परिपत्र जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव कल तक स्वीकार किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दिन के साथ रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 5 शहरों का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर का दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां आम नागरिकों के अलावा पशु पक्षी भी गर्मी और लू से बेहाल नजर आ रहे हैं।
1: भीषण गर्मी का असर लगातार जारी है। बुधवार को इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के चलते रात को भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई। दोपहर के समय शहर की सड़कें सुनसान नजर आई। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। लोगों को रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। गर्मी के इस दौर में शीतल पेय और खाद्य पदार्थों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्री गंगानगर।
0: भरतपुर में भी बढ़ती गर्मी की वजह से शहर में अघोषित कर्फ्यू देखा जा रहा है। जैसलमेर में प्रचंड गर्मी के साथ साथ बिजली कटौती भी जनजीवन को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी जिलों में अगले 2-3 दिन तक भीषण गर्मी और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी जिलों में आंधी और बारिश से राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलना शुरू होगा। कल से 31 मई के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में तेज अंधड़ और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके चलते तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इधर राज्य सरकार भीषण गर्मी में आमजन, विशेषकर राहगीरों और मूक पशु पक्षियों के लिए पेयजल और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गत दिनों परिपत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टर, स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों को ग्रीष्मकाल के दौरान पशु पक्षियों को तेज गर्मी और लू से बचाने तथा उनके लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने कल शासन सचिवालय में पीपल के 11 वृक्षों पर दाने और पानी के लिए परिंडे बांधे। राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर में आज CSR कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में होने वाली इस कार्यशाला में औद्योगिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यशाला के माध्यम से इन इकाइयों और संस्थाओं को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास से जुड़ी गतिविधियों में सक्रियता सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा। करौली में स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पौधरोपण, गौ पूजन और रणगमा ताल पर दीपदान किया गया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम अंतिम ओवर में 196 रन पर ही ऑल आउट हो गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में कल दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जन

फेसबुक कमेंट पर आधारित कार्यक्रम दिल से दिल तक में सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ और प्यारे प्यारे गीतों के साथ आपकी रेडियो साथी मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बने रहिए कार्यक्रम दिल।

प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं, अब बारी है आपके कमेंटों की। पहला कमेंट हम लेने जा रहे हैं रवि कुमार राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। इनका कहना है कि जीवन में हम जीते हैं और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये चक्र जो है वो चलता रहता है, तो गुमान किस बात का है? घमंड, जलन, हिसाब किताब सब यही रह जाना है। शरीर नाशवान है, पद प्रतिष्ठा दो दिन की मेहमान है, इसीलिए जीवन में हमेशा बांट कर और हमेशा खुश रहकर, दूसरों को कुछ देकर, स्वयं कुछ पाकर इस जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छे विचार आपके। नाई वाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा का अगला कमेंट है, कहते हैं किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। अहंकार की मुट्ठी बांधकर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, यदि कुछ प्राप्त करना ही है तो समर्पण की अंजलि बनाकर ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भ्रम हमेशा रिश्तों को बिखेर देता है और प्रेम से अजनबी भी बन जाते हैं। बिल्कुल, हम ऐसे इंसानों को पहचाने जो हमारे अपने बन सके। अगला कमेंट है चंडीगढ़ से सतीश और भिमराना जी का, ये लिखते हैं खून के रिश्ते नाम से नहीं, निभाने से मजबूत होते हैं। कभी सबसे गहरा सहारा बनना है तो कभी वही सबसे गहरा जख्म भी दे जाता है, क्योंकि रिश्तों में खून नहीं समझ इज्जत और अपनापन उन्हें जिंदा रखता है। जो समय पर साथ खड़ा रहे वही अपना कहलाता है, वरना रिश्ता सिर्फ पहचान बनाकर ही रह जाता है। और भी कमेंट लेंगे इस प्यारे से गीत के बाद।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: मिस सीमा
5: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
5: क्यों, लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
5: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
5: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
5: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
6: हेलो मम्मा।
7: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
9: अंतराल के बाद अब फिर से बारी है आपके कमेंट की। कमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा का। ये कहते हैं, खुद पर भरोसा करने का हुनर हमें सीखना चाहिए, क्योंकि सहारा कितना भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही देता है। अच्छी बात है, क्योंकि खुद पे भरोसा ही सबसे बड़ी बात है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, ऐसे कामयाबी ही है। सिर्फ और सिर्फ जो कामयाबी है वो ठोकर खाकर मिलती है। बहुत अच्छी बात बताई है गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासर, सचिन, सतीश, योगेश, उद्धव कड़वासर और हनुमान सहारण ने। कमेंट एक और लेते हैं, साथी हैं हमारे भेरूलाल बागतरिया थाकर, उन्हेल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से। गुस्से में आकर हमें कोई कार्य हमेशा आफत में डाल सकता है। कोई काम बिगड़ जाए तब हम सामने वाले पर बिफर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और उस पर तमतमाने लगते हैं, अपशब्द कह देते हैं, लड़ाई झगड़ा

इसीलिए हमें गुस्सा जब भी आए तो खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। मोताला महाराष्ट्र विजय सुरलकर रतन माला सुरलकर ये कहते हैं, परोपकार निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, गरीब और जरूरतमंद को सहारा देना, इसमें अपना व्यक्तिगत लाभ छिपाना हो बल्कि यह सच्ची करुणा सहानुभूति और प्रेम से किया जाए, वही परोपकार कहलाता है। कमेंट और पढ़ेंगे प्यारे।

अभी जो धूप इतनी तेज हो रही है भीषण, उससे बचने के लिए, लू से बचने के लिए सभी को कहा है, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो फिर हम अपने सारे कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे। और हमारे साथी हैं इन साथियों का नाम जी पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार और देवांगन, ये कहते हैं हमें जिस इंसान ने दूसरों के साथ छल किया, अपमान किया, ये समझा जाए कि अगर उसके साथ हिसाब नहीं होगा तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर उसने किसी के साथ अपमान, किसी का अपमान किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ वैसा होगा जिससे उसको एहसास होगा कि उसने गलत किया है। इसीलिए जितना हो सके किसी के साथ गलत व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं कि आपसे बात करके संतुष्टि प्राप्त हो सामने वाले को। तो ये तो थे आपके कमेंट, और अंतिम गीत भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि आप अगर हमारे साथ अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं तो कार्यक्रम दिल से दिल तक में अपने कमेंट हमें हमारी फेसबुक पेज पर जरूर दें। हम कार्यक्रम दिल से दिल तक में आपके कमेंट को शामिल करेंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ। श्रोताओं, ये जो कार्यक्रम है वो आपके चुनिंदा विचारों के लिए है, आपके ऐसे विचार जो सुनकर हम और आप सभी अपना कर उन्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अपने विचारों को उम्दा बना सके। ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम है, लेकिन आपकी पसंद का कार्यक्रम नहीं है जिसमें आप अपने गाने फरमाइश के तौर पर फेसबुक पेज पर भेजते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट है जिनको शामिल किया जाता है। तो कार्यक्रम दिल से दिल तक में अपने कमेंट

श्रोता भी सुन रहे थे फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम दिल से दिल तक। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बजे है। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गईं?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और चूंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।

0: एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और ट्वेल्थ के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली वी कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एज काफ़ी एक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना

0: मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसा ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं चाहे वो सोसाइटी में हो हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।

में काम करे या आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफ कोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो, तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि

0: लैबरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है। ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफ कोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा। उनका इतना सिंपलिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं। 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे। तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप उसे प्ले कर सकते हैं।

0: भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया, डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव और लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई, लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव की, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को ज़मीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया, वो स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है, तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहाँ पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए, तो फिर वही होता है ना डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रोका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
0: लेकिन ये कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो लाइक कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारे ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए, बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल

0: ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए. ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे, सडनली कोई कोलैप्स होता है. इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकेंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स. तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में. तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से. तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर सीपीआर किया. हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी सीपीआर किया. उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी एमओएस की मिनिस्टर थी. तो कई लोगों ने सीपीआर को एक्सेप्ट किया. और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में सीपीआर स्टेशन होता है
1: जी जी.
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको. एक्सप्लेनेशन के लिए आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है. और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं. अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है.
1: बिल्कुल.
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को सीपीआर आनी चाहिए
1: जी.
0: तो वो एक अच्छा मकसद है. एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था. सीपीआर क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था. लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजिली बोल पा रहे हैं कि सीपीआर करना है.
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है.
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है. और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बुला रही, डॉक्टर हम सीपीआर, मुझे तो आता था लेकिन मैं, डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं. तो उसको ये जेन्युइन डर था. तो मैंने बोला, देखो अगर आप सीपीआर नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं. हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है. अगर अभी आप सीपीआर कर रहे हो, और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ. जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप सीपीआर करो. एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो. और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा. एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला. अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा. तो हमें कोशिश करनी चाहिए. हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने, वो कोशिश

0: और इजीली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूँ कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन हैं कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और

0: कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को सीपीआर आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेड्सकेप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके।

0: टाइप, सुनो वैसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है। समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में, 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था. तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है,
1: जी
0: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इश्यू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आ सकता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आप

0: वैस्कुलर लम्प था, तो मुझे बोलती नहीं, अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी. मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं था,
1: प्रायोरिटी नहीं थी,
0: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो

0: जाते हैं और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलो अप उसके, तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की वो रेगुलर चेकअप पे कर, 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है, अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली, ये बेहद खतरनाक है।
0: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में, चैटजीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6-7 महीने किए और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो, जो सोशल मीडिया होता है वो

0: ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है. बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे. आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके. क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, मतलब एज अ जोकिंगली. बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
1: जी.
0: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए. तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं

0: एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी.
1: सेम दवा.
0: हाँ, सेम दवा. सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे ही घर की नहीं है, ये हर घर की है.
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी.
0: उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये यू नो दर्द का है, तो
1: यस.
0: वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं. बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है. तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया. और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है. और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट,
1: यस.
0: उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द यू नो काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके यू नो कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गेन्स पे डैमेज करके चली आई है.
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता. और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं.
0: मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे. जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे. लेकिन ये बात मुझे इम्पोर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है. जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक
1: जी
0: डीप वैक्यूम. या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है. वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया. और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है. और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है. आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे. तो
1: जी
0: उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना. ये
1: क्या
0: गाना मुझे
1: बात है,
0: बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट.
1: सुनते ही ये गाना.

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज्यादा न्यूज भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीजें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है। पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि कियोस में यूज करें। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं। और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं, वो किसी भी पार्टी के होने दो। वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा चीज है। और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: आज की मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे
2: और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: तंबाकू जानलेवा होता है, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4।

0: यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण मिले जो सुनिए। हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण

अब से थोड़ी देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार होंगे सुजान सिंह खींची। दिन में 1:00 हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत 1:05 पर। विशेष जानकारी दी जाएगी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। चर्चा होगी रसोई प्रबंधन और समय बचाने के उपाय। वार्ता होगी व्यायाम का महत्व। साथ ही आप जानेंगे व्यंजन विधि। दिन में 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। दिन में 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने।

आकाशवाणी दिल्ली से रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ शाम 4 बजे हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5 बजे। फेसबुक कमेंट पर आधारित कार्यक्रम होगा बातें रेडियो की। शाम 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे।

किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 7 बजे। चर्चा होगी कृषि स्टार्टअप व युवा किसान, जानकारी दी जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपियन 2026। एक और चर्चा होगी किसान उत्पादक संगठन का महत्व है।

राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे शाम 7:30 पर और रात्रि 9:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता रात्रि 8:00। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9:00 News@9 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे कंट्री वाइड और इनसाइट्स। प्रांतीय नाटक आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजलें। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

जॉली मुखर्जी को सुनिए, फिल्म का नाम है संगीत। गीत रचना संतोष आनंद की है और संगीत रचना आनंद विनित की।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

सपने फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी हरिहरन और साधना सरगम की। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत आकाशवाणी चूरू से।

द हैक फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए दिल का रिश्ता फिल्म का शीर्षक गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की।

दिल का रिश्ता फिल्म के शीर्षक गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जे रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओ आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना? रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी

0: कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
1: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
1: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
0: जी।
1: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और

0: पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है।

0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है
1: जी।
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है
1: जी। जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा

0: से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
1: एक दिन की बात है।
2: जी कहिए।
3: आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
2: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।

0: एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
1: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
1: ऐसे नहीं,
3: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
0: अरे योगेंद्र,
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
1: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
1: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
4: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
5: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
4: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
5: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
4: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
5: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय

घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ

लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।

0: सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सुजान सिंह खिची एंड पार्टी की गई इस लोक रचना के साथ ही अब आज का लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर्ग ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को है कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिलीज किए जाएंगे।

समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। भरतपुर में कुम्हेर गेट स्थित ईदगाह पर मुख्य नमाज अदा की गई। इस दौरान यहां मेला भी लगाया गया। डूंगरपुर में शहर में ईदगाह तक जुलूस निकाला गया और सामूहिक नमाज अदा की गई। इसी तरह भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर यह त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा में अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र की कोई भी शंका अनसुलझी न रहे और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब सीबीएसई ने देश में ऑन स्क्रीन मार्किंग को लागू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। ये रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देशभर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। आयोग ने कहा कि हाल के कानूनी सुधारों से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है, लेकिन कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में 1 से 30 जून तक बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान होटल, ढाबों, ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों, रेलवे प्लेटफार्म, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल तथा अस्थायी बस्तियों में रह रहे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए इंडिगो आगामी जुलाई माह से 2 नई उड़ान सेवाएं शुरू करने जा रही है। किशनगढ़ को दिल्ली और नोएडा से जोड़ने वाली इन नई फ्लाइट्स के शुरू होने से अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर और आसपास की बड़ी आबादी को बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा ने बताया कि 1 जुलाई से दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू होगी। ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित की जाएगी। इसके अलावा 2 जुलाई से नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू की जाएगी। ये सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। अजमेर जिले में आज एक स्कॉर्पियो में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। घटना बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव के पास हुई। इस घटना में पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी मां, पत्नी और भांजी की मौत हो गई। चारों के शव स्कॉर्पियो में बुरी तरह जले हुए मिले। हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जाँच जारी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान सूरज आग बरसा रहा है। सभी शहरों में बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा दिन का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। पिलानी में 47, जोधपुर में 46.6, जैसलमेर और चूरू में 46.4, कोटा में 45.4, बाड़मेर, फतेहपुर शेखावाटी में 45, अलवर

8.8 और लूणकरण सर में 44.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दोपहर बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी श्रोता बहनों का स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम में। और आज उनका साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, उनकी सखी रेखा खंडेलवाल। तो स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल नमस्कार।

जी हाँ बहनों, हर एक घर को ऐसी ही कुशल गृहिणी की ज़रूरत होती है जो न केवल अपनी रसोई का प्रबंधन संभाले बल्कि अपना समय भी बचाए, और समय भी कुछ इस तरीके से बचाए ताकि वो जो भी समय बचता है उसका रसोई का काम करने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ बिता सके। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि रसोई हर घर का दिल होती है, जहां प्यार से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है, जहां सबकी सेहत का ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर उसी रसोई घर में किसी महिला का, घर की धुरी जो गृहिणी होती है, उसका अधिकतम समय निकल रहा है तो वो क्या करे? ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो अपना काम जल्द से जल्द खत्म कर सके और बाहर आकर अपने बचे हुए समय को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अपने प्रियजनों के साथ बिता सके। और एक चीज कि अगर रसोई की प्रबंधन की बात की जाए तो सबसे पहले जो नज़र जाती है वो जाती है रसोई की सफाई व्यवस्था पर। अगर रसोई की सफाई व्यवस्था का ध्यान न रखा जाए तो बीमारियाँ छोटे स्तर पर शुरू होकर पूरे घर में फैल जाती है, और ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी फिर घूम फिर कर गृहिणी तक ही आती है। तो वर्तमान समय में जबकि हम जानते हैं कि जाने अनजाने बिना हमारे कुछ के ही हमारे प्रियजन जो हैं अनेक गंभीर बीमारियों से जूझने लग जाते हैं, ऐसे में हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए रसोई की स्वच्छता को बनाए रखने का। भोजन बनाने से लेकर सूखे भोज्य पदार्थों के भंडारण तक स्वच्छता बनाए रखने का काम जो होता है वो अनेक बीमारियों को स्वतः ही दूर कर देता है। और अगर हमारा भंडारण सही तरीके से है, रसोई का प्रबंधन सही तरीके से है, हमारी रसोई स्वच्छ है, तो आपकी रसोई एक सुखद और आकर्षक स्थान बनाती है सभी के दिल में। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स साझा करेंगे जो आपको आपकी रसोई के प्रबंधन में मदद करेंगे। पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
2: हम बात कर रहे थे बहनों रसोई के प्रबंधन की, तो हमें ये पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जब हम बात करते हैं रसोई की, तो वो एक ऐसा स्थान होता है जो बहुत सीमित जगह घेरता है। अगर किसी की रसोई में सामान रखने की जगह नहीं होती है, तो निसंदेह उसने बाकी अपना सामान रखने के लिए अलग से स्टोर रूम या भंडार गृह ज़रूर बनवाया होगा, अगर घर में जगह है तो। और अगर घर में बहुत बड़ी जैसी स्पेशियस घर बना हुआ है, तो उसने अपने किचन को ही स्टोर रूम के साथ कनेक्ट करके घर बनाया हुआ होगा। तो वहां पर अगर ऐसी कोई स्थिति है, तो रसोई का जो भंडारण है या प्रबंधन है, वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और कुछ चीजें हैं जो हमें रसोई में जाते वक्त या रसोई से निकलते वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हमारा समय भी बचे और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। जैसे कि रसोई में हम जाते समय हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि साफ सफाई हुई हुई है या नहीं। अगर नहीं है, तो पहले रसोई की साफ सफाई का ध्यान रखें। मतलब अगर आप बाहर से आ रहे हैं, तो अपने हाथ धोकर, हाथ पैर धोकर ही रसोई में घुसे और रसोई को साफ करके लग जाएं। और अगर आपने खाना बनाना है, बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं, तो जैसे इकट्ठे हो रहे हैं आप खाना बना के बाहर निकल रहे हैं, ये नहीं कि आपने बर्तन इकट्ठे किए हुए सिंक में छोड़ दिए, नहीं, हाथों हाथ उनको समेट दिया, धो के साफ करके आपने उनको शेल्फ्स में सेट कर दिया, तो आपका समय बचता है। एक तरीके से ये प्रबंधन हो जाता है आपके समय का, आपकी रसोई का। और रसोई जो नीट एंड क्लीन लगती है, किसी भी बाहर से आने वाले को अच्छी लगती है। उपयोग के बाद अगर आपने बर्तन साफ कर लिए हैं, तो आपने उनको जचा दिया है। अगर आप गीले धोते हैं या मिट्टी से मांजते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर तुरंत उनको साफ कर लिया जाए, तो आपका समय भी बचता है और आपका समय का जो है प्रबंधन भी हो जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सूखे भोज्य पदार्थों की, तो मसलन होता है कि सूखे भोज्य पदार्थों में हम, जैसे कि हमारे देश में हम अपने अनाज का स्टोर करते हैं, साल भर का अनाज स्टोर करते हैं, मसाले स्टोर करते हैं, दालें चावल इनको स्टोर करते हैं, तो जब भी आप ला रहे हैं, साल भर का ला रहे हैं या महीने भर का या 6 महीने का, जब भी आप राशन का सामान या सूखे भोज्य पदार्थ ला रहे हैं, तो चावल को छोड़कर बाकी सभी चीजों को अच्छी तरीके से धूप दिखाकर साफ और सूखे एयरटाइट कंटेनर में इस तरीके से रखिए कि आप जब भी इनको निकालना जाने की कोशिश करें, तो ये तुरंत आपके हाथ में आ जाए। ऐसे नहीं कि आपको 4 डिब्बों को सरकाना पड़े, तब जाकर पीछे से आपको कुछ सामान निकालने की जरूरत पड़े। अगर आपकी रसोई बड़ी है, तो निश्चित रूप से भंडारण के लिए आपने शेल्फ भी बना रखे होंगे या अलग से किचन का स्टोर बना हुआ है, तो उसमें भी आपको सप्ताहांत में एक बार सफाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये सफाई इस तरीके से कीजिए आप कि आपने हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है, समझ लिया है, और हर वो चीज जो आपने एयरटाइट कंटेनर में रखी है, एक बार आपने उनको भी चेक जरूर करना है कि कहीं उनमें कोई कीड़े वगैरह ना हो गए हों। और अगर ऐसी कोई स्थिति है, तो एक बार आपको उन्हें धूप जरूर दिखा देनी चाहिए। अपने किचन स्टोर में सामान का भंडारण या प्रबंधन उनकी उपयोगिता के अनुसार करें। मतलब जो सामान हर रोज काम आता है, जैसे कि आटा, दालें, चावल, इनको अपनी पहुंच के नजदीक रखें। इनके अनुसार काम आने वाले बर्तन, कलछी, कढ़ाई, भगोने या ग्लास, जो भी बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी अपने हाथ की पहुंच में ही रखें। और बाकी सामान जो हफ्ते से या 15 दिन से या महीने भर में एक बार इस्तेमाल होता है, उन्हें उनकी उपयोगिता के आधार पर दूसरे और तीसरे नंबर पर पीछे की तरफ या दूसरे तीसरे शेल्फ में इस तरीके से रखें कि जब भी आपको 15 दिन या 20 दिन के बाद उनकी जरूरत पड़े, तो आप उन्हें आसानी से निकाल सके। इस तरीके से अगर हम रसोई में प्रबंधन करते हैं अपने सामान का, तो लगने वाला जो समय होता है हमारी रसोई में, वो आधा हो जाता है और काम में आसानी हो जाती है। स्टोर की जाने वाली सभी चीजों के डिब्बों पर अगर आप उनकी सामग्री के हिसाब से चिट चिपका देती हैं, जैसे चीनी के डिब्बे में चीनी है, चाय के डिब्बे में चाय है, या गेहूं के बर्तन में आपने गेहूं डाल रखे हैं, दालें डाल रखी हैं।

अगर आप ये लगा देती हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर हमें पता रहता है कि हमें क्या निकालना है, हम उसी डिब्बे पे हाथ लगाते हैं। और अगर ये चिट नहीं लगी हुई होती है और डब्बे ट्रांसपेरेंट, जैसे कि अमूमन नहीं मिलते हैं, स्टील के हैं या एल्यूमिनियम के डब्बे हैं, तो उनमें से हर एक को खोलकर देखने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और फिर से हमारी रसोई की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो एक छोटी सी चीज़ है कि जब भी आप सामान स्टोर कर रहे हैं तो डब्बों पर चिट ज़रूर चिपका दें कि कौन से डिब्बे में क्या सामान रखा हुआ है, और डब्बों को भी उनके साइज के हिसाब से छोटे से बड़े के क्रम में इस तरीके से जचाएं कि आपके हाथ में वो आते ही निकले और आप उन्हें आसानी से बाहर निकाल सके, उनमें से सामान निकाल सके, साथ ही सफाई भी आसानी से हो सके और आपका समय भी बच सके। एक चीज और बहनों, हम देखते हैं कि कई बार साल भर से जो राशन का सामान, जैसे बड़ी चीजें हैं, गेहूं दालें या चावल वगैरह साल भर से आते हैं, तो उन्हें अच्छे से धूप दिखाकर और स्टोर करना होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो महीने की महीने मंगवाई जाती है, मसलन जब भी है दालें हैं, चावल है, इनको छोड़कर जो भी चीजें आपके घर में इस्तेमाल होती हैं वो हर महीने अगर मंगवाई जा रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामान आ गया लेकिन आलस चढ़ गया हम पर और हमने उस सामान के कट्टे को या जस में भी सामान आया है तेलियों को हमने अलग सरका दिया कि रख देंगे बाद में। नहीं, क्योंकि ये जो दोहा हमने सुना है ना, काल करे सो आज कर, ये चीज हमें अप्लाई जरूर करनी चाहिए। राशन का सामान आ गया तो जिस चीज को धूप दिखाना है धूप दिखाइए, जिस चीज को अलग से स्टोर करना है स्टोर कीजिए, सामान को डब्बों में जमा कर अच्छे से रखिए ताकि आपको निश्चित समय पर नियत डब्बों में सामान मिल जाए और बाद में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बाद में जब हम चीजों को उधेड़ बुन में लगते हैं तो सामान मिलता कम है, फैलता ज्यादा है, रसोई बिखरी और अव्यवस्थित लगती है और नतीजा सबसे ज्यादा परेशानी हमें ही भुगतनी पड़ती है। जितना समय नहीं लगना चाहिए उसका दुगना समय लग जाता है। वैसे तो एक बात यह है बहनों कि हम मध्यम वर्गीय लोग अपने पूरे हफ्ते की भोजन की योजना नहीं बनाते, लेकिन अगर इस आदत को अपना लिया जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे कि आपने शनिवार की या रविवार की रात को तय कर लेना है कि आपने पूरे हफ्ते क्या बनाना है। एक समय अगर आप दाल बना रही हैं तो दाल का डब्बा पहले से बाहर की तरफ निकाल के रख लिया जाए कि हाँ भाई एक समय पूरे हफ्ते दाल बननी है, और एक समय अगर भोजन में सब्जी वगैरह या कढ़ी वगैरह जो भी चीज़ बन रही है तो उसका भी अगर आप एक मेनू बनाकर फ्रिज पे या कहीं पर भी आप लिस्ट बना के रख लें तो ये आदत कोई बुरी नहीं है। एलिट क्लास के लोगों की कुछ आदतें अगर हम अपनाते हैं तो हमें भी वो एक भाव रहता है कि हमारा प्रबंधन जो है समय का, रसोई का, हमारे काम का बड़ी आसानी से हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे पास रोजाना से जो समय लगता है हमारी रसोई में दुगना तिगना उतना समय हमारे पास बच जाता है और उस समय को हम फिर बाकी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अपने हुनर को निखार सकते हैं, अपनी रुचि को और आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी रुचि को अपनी कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। अगर आप अपनी रसोई का प्रबंधन करती हैं तो न केवल आप अपना समय बचाती हैं बल्कि उस समय के सदुपयोग से आप न केवल नई चीजें सीख सकती हैं बल्कि दूसरों को सिखा सकती हैं और ये एक तरीका है आत्मसंतुष्टि का। आप मनचाही तरीके से अपने समय का इस्तेमाल तब कर सकती हैं जब आप अपनी रसोई को, अपने समय को पूरी तरीके से व्यवस्थित करके रखेंगी। तो शुरुआत आज से भी अगर आप करती हैं तो कोई देर नहीं है, क्योंकि समय का कभी कोई अच्छा या बुरा मुहूर्त नहीं होता, समय समय होता है। आप जब भी काम करना शुरू करेंगी सही रहेगा।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: हम बात कर रहे थे बहनों अपनी रसोई के प्रबंधन की और हमारी समय की बचत की। जब हमारा समय बच जाता है तो कई बार मन दौड़ने लगता है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, आलस चढ़ जाए तो सो जाएं। और सोने का मतलब होता है कि गई 3 से 4 घंटे की, और अगर फ़ोन लेकर स्क्रॉल करने लग गए फिर तो बस पूछे ही मत, कल सुबह से लेकर शाम ढल जाती है, पता तक नहीं चलता। जबकि इसी समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों में आहार ही नहीं होता है, व्यायाम भी होता है। नियमित व्यायाम एक स्वस्थ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। व्यायाम से न केवल शरीर मजबूत और ऊर्जावान बनता है, बल्कि इससे मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। व्यायाम का मतलब सिर्फ शारीरिक कसरत ही नहीं होता है, बल्कि मानसिक व्यायाम में आप योग, ध्यान और आसन को भी शामिल कर लेते हैं। हम शारीरिक व्यायाम करें या मानसिक व्यायाम करें, मतलब तो इनका हमारे शरीर की सेहत को बनाए रखना ही है। ये सभी व्यायाम की श्रेणी में आते हैं और इनका मुख्य कार्य हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखना ही है। ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य को तो बनाए रखते ही हैं, बल्कि हमारे मन के भी स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। नियमित कसरत अगर आप करते हैं तो रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप जैसी जो बीमारियां हैं इनका जोखिम कम होता है। संतुलित आहार और व्यायाम के जो संतुलन है, इससे आपका वजन नियंत्रण में रहता है। और अभी तो चल रही है गर्मियां, इसमें आप आराम से सुबह के समय व्यायाम कर सकती हैं और अपने वजन के नियंत्रण के लिए बहुत सारी हेल्दी डाइट ले सकती हैं। मतलब बहुत सारे फ्रूट्स हैं या जो स्मूदी है या जो सलाद है, वो चीज़ें मार्केट में भरपूर आई हुई है, आप उनका इस्तेमाल करके अपना वज़न कम कर सकती हैं। सर्दियों में जितना वज़न हमारा खाने से बढ़ता है, गर्मियों में हम उतना ही वज़न अपना कम कर सकते हैं। योग, ध्यान और आसन के संयोग से आप तनाव, चिंता, अवसाद से मुक्ति पा सकती है। इसके साथ ही व्यायाम करने से हमारे मस्तिष्क से एंडोर्फिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जो आपको बेहतर महसूस करवाने में मदद करता है। इनडायरेक्ट वे में कहें तो ये भी आपके तनाव, चिंता को दूर करने में मददगार साबित होता है। रोजाना की कसरत से आपके शरीर में थकान का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे जब आप रात को सोते हैं तो आपकी नींद की गुणवत्ता अपने आप सुधरने लग जाती है। और वैसे भी 7 से 8 घंटे की नींद नॉर्मल बताई गई है। उम्र के हिसाब से समय कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर नींद गुणवत्तापूर्ण हो तो शारीरिक स्वास्थ्य सही बना रहता है। इसलिए भी व्यायाम को रोजाना करना चाहिए। नियमित व्यायाम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते और अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। व्यायाम से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सही होता है, बल्कि आपका मूड भी सही रहता है। वो जो कई बार मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं मेनोपॉज की वजह से या अर्ली मेंस्ट्रुअल की वजह से, ये मूड स्विंग्स भी व्यायाम से

तार्किक निर्णय लेने की, विश्लेषण करने की क्षमता सही होती है। इसलिए एक सेहत हजार नियामत वाली बात पर अमल करें और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं।

इस प्यारे से गाने के बाद हम बहनों फिर से रुख करते हैं अपनी ही स्वास्थ्य संबंधी बात के बारे में। बहनों, आज है 28 मई और 28 मई को हमारे भारत में या पूरे विश्व में ही कहें तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो ये मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है क्या? हम पहले तो यह जानेंगे कि मासिक धर्म क्या होता है। यह एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो एक युवती के या एक लड़की के शरीर में तब शुरू होता है जब उसकी उम्र 14 से 15 वर्ष होती है। और आज के समय में जिस प्रकार का खान पान है और गर्मियों का जो मौसम चल रहा है, यह जो उम्र है घटकर अभी 10 से 11 साल रह गई है। एक निश्चित समय होता है उम्र के इस पड़ाव में जब तक आपका यह जो मासिक धर्म का समय पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता, अर्थात तो मेनोपॉज के बाद पूरी तरीके से मासिक धर्म आपका रुक नहीं जाता। इस दौरान का यह आपकी उस उम्र से जब यह शुरू होता है वहां से लेकर जब तक का खत्म होता है उसका 20-25 साल के दौरान का यह जो समय होता है, उस दौरान हर महीने के कुछ दिन आपके शरीर से अनचाहे खून का गिरना मासिक धर्म का आना कहलाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आपके अपने शरीर से या अपने ही खून से बेचैनी, उल्टी या किसी तरीके की अजीब एलर्जी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई गंदगी नहीं है, यह आपका अपना खून है, लेकिन यह पूरे शरीर की क्लीनिंग के बाद बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। मासिक धर्म बहुत छोटी सी प्रक्रिया नहीं है, यह वो प्रक्रिया है जो एक स्त्री को पूर्णता प्रदान करती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें या मेडिकल टर्म में कहें तो अगर किसी स्त्री को मासिक धर्म में परेशानी होती है, समस्या होती है, या कुछ महीनों के अंतराल पर या कई कई महीनों के अंतराल से उसे मासिक धर्म आता है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से यह मान लिया जाता है कि शादी के बाद उसकी प्रेगनेंसी में या कंसीव करने में समस्या हो सकती है। तो अगर आपके घर में कोई बच्ची ऐसी है जिसे महीना आना शुरू हो चुका है लेकिन महीना जो है कुछ समय या कुछ साल निकलने के बाद भी 8-8, 10-10 महीनों से या साल में एक बार दो बार ही आता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है उसके शरीर को बाद में परेशानी में डालने वाली है। तो समय रहते इसका इलाज किया जाना ज़रूरी है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो है हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह जो मासिक धर्म या माहवारी है, इस दौरान रखे जाने वाली स्वच्छता के महत्व को समझाना, मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं को या पाबंदियों को तार्किक ढंग से सुलझाना और सुरक्षित सैनिटरी उत्पादों की पहुंच सभी तक, सभी माँ बहनों तक सुनिश्चित करना है, ताकि इस दौरान वे किसी भी तरीके के अनिश्चित संक्रमण से बच सके। ऐसा संक्रमण जो गंदे कपड़े या किसी और चीज के इस्तेमाल से हो सकता है। तो आप सभी से, जितनी भी माएँ या बहनें हैं या जिन बहन बेटियों को मासिक धर्म शुरू हो रहा है या लगे कि हाँ भाई कुछ सालों में आपकी भी घर में कोई बेटी है जिसको मासिक धर्म शुरू होने वाला है, तो आप पहले यह तय करें कि उसे अपने शरीर के बारे में बताएं, उसे बताएं कि उसके शरीर में इस दौरान क्या बदलाव होने हैं और उसे अपना ध्यान कैसे रखना है। अगर मासिक धर्म शुरू होने में या वो लगे कि हाँ भाई कुछ समय में ही उसको पेट दर्द जैसी समस्या हो रही है या साल भर से लगे कि बच्ची आपको पेट दर्द की समस्या लगातार बता रही है, हर महीने बता रही है, तो ये एक संकेत होता है कि हमारी जो बॉडी है वो ट्रिगर करती है कि कुछ समय बाद बच्ची को मासिक धर्म शुरू होने वाला है। ऐसी अगर कोई समस्या आपके बच्ची के साथ है तो आप बच्ची को संभालें, समझाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, काउंसलर के पास अगर ले जाना संभव है तो ठीक है, अन्यथा घर पर उसे क्या इस्तेमाल करना है, सैनिटरी पैड का

किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें अगर आप बेहतर तरीके से समझाती हैं, तो बच्ची अगर स्कूल में है या कहीं बाहर है, कहीं खेलने गई है या रिश्तेदारी में कहीं गई है, तो वहां पर घबराने के बजाय अपने आप को संभाल लेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिस दौरान अगर वो इन चीजों का ध्यान रखे तो मासिक धर्म एक जो प्रक्रिया है ये बहुत आसानी से पूरी हो सकती है, और वो है खुद की साफ सफाई का ध्यान रखना। हालांकि बहुत सारी जो चीजें हैं मासिक धर्म के दौरान हम लोगों को झेलनी पड़ती है और एक उम्र तक झेलनी पड़ती है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसी कोई समस्या हो ये जरूरी नहीं है। बात करेंगे इस पर थोड़ी सी और, लेकिन पहले सुनते हैं ये प्यारा

हम बात कर रहे थे बहनों मासिक धर्म के बारे में। आज भी कई जगह मासिक धर्म को शर्म या अशुद्धता की निशानी की तरह देखा जाता है। हालांकि शिक्षा का प्रचार प्रसार होने के बाद इस सोच को बदलने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं और इस विषय पर खुलकर बातचीत करने लगे हैं। और इसीलिए आज का यह जो दिन है, इस विषय पर खुलकर बातचीत करने के लिए माहौल जो बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो रखा जाता है।

है। 28 मई को यह दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि साल का पांचवा महीना अर्थात मई माहवारी के पांच दिनों के चक्र को दर्शाता है और 28वां दिन यानी मासिक धर्म की सामान्य अवधि को दर्शाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि माहवारी या मासिक धर्म या पीएमसी जिसको हम बोलते हैं, यह एक प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है जो एक तरीके से शरीर के स्वस्थ होने की निशानी है और यही एक प्रक्रिया है जो एक स्त्री को मातृत्व का सुख प्रदान करती है। तो यह प्रक्रिया जो एक स्त्री को माँ होने का गौरव प्रदान करती है, वह प्रक्रिया अशुद्ध कैसी हो सकती है? इसी एक मिथ को, इसी एक भ्रम को तोड़ने के लिए यह जो दिन है मनाया जाना बेहद जरूरी है। और हमारे देश के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहां पर मासिक धर्म का आना, अगर किसी कन्या में पहली बार मासिक धर्म का आना हुआ है तो वहां इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है और इसीलिए इस उत्सव को वहां पर बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास असम है, जहां पर माँ कामाख्या का मंदिर है। वहां पर अगर किसी बेटी को पहली बार मासिक धर्म आता है तो उसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। पूरे गांव में या परिवार में भोज का आयोजन भी होता है। तो एक ही देश में अलग अलग भ्रांतियां चल रही हैं और इन्हीं भ्रांतियों को तार्किक ढंग से सुलझा कर आगे बढ़ने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो अगर आपके आसपास किसी बेटी को पहली बार मासिक धर्म शुरू हो रहा है या होने वाला है या वो किसी तरीके के पीरियड क्रैम्प्स से जूझ रही है तो उसे पास बैठाकर उसकी समस्या सुने, समझें और समझाएं कि इस दौरान उसे अपनी सफाई का, अपनी स्वच्छता का, अपने कपड़ों का, अपने पहनावे का और खास करके अपने भोजन का किस तरीके से ध्यान रखना है ताकि यह पांच दिन का सफर जो है उसके लिए सफर न बन जाए और हंसी खुशी से यह हर महीने के पांच दिन उसके निकलने लगे। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से दीजिए विदा अपनी सखी रेखा खंडेलवाल को। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से पहले मिडडे न्यूज, फिर 2:15 पर दोपहर समाचार रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा।

0: के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अज़हा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि DK शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
5: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
6: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फिन नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
7: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देती

0: हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: अंतराल से पहले आपने सुना आर पार फिल्म का गीत, आवाजी थी मोहम्मद रफी और गीता दत्त की। आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

यस बॉस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए इश्क पर जोर नहीं फिल्म का गीत, गायिका है लता मंगेशकर।

इश्क पर जोर नहीं फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की पहली सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 4 बजे दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है।

नंदन वंदन अभिनंदन संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हो या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड

0: Captain Abhiram Pankaj, 2nd in command, 139 Battalion CRPF deployed है मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में. सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का. कमांडेंट अभिराम पंकज आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी. सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ. आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं सीआरपीएफ की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ. और ये मैं एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है. मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी. और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं. लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं. सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है. अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो आप किन शब्दों में सीआरपीएफ को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज सीआरपीएफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है सीआरपीएफ. जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे बीएसएफ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, सीआईएसएफ वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए. तो सीआरपीएफ ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक सीआरपीएफ ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे. और आज सीआरपीएफ ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, और जिस तरीके का सीआरपीएफ ने काम किया है. और ऐसा वहीं नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. तो सीआरपीएफ को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि सीआरपीएफ सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है. और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है
0: जी. होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं. और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं. तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह. और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप तक पहुंचते हैं. तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार है भेजिए जरूर.

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चले। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार ही लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था, बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट।

0: तो को क्या माध्यम था जिसके जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें आप अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने लिया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती है। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF।
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
1: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है, उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं, आप असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
1: ये मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
0: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकार का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह है, बहुत खुशी के बहुत है। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया, कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर

0: करना चाहता हूं, तो बहुत खुश हुए यहाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
1: जी निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, ऐसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
0: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: अपने
0: बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी, तो CRPF तक का रास्ता सहल की और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी,
1: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की FM रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें, तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के

0: अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट के की याद में वैलर डे मनाया जाता है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ ने इन तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर, एलडब्ल्यूई थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया। कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को 1 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
1: जी निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन-कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन-कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में अब हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रीक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना। क्या बात है। तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?

0: जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है। तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
1: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
0: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया उन दिनों। मैं याद करता हूँ एक नक्सल अभियान में, ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं, उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी। तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौकों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में बिता कर आया। तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: वाह क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअली और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके। तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्य निष्ठ हैं। हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे। तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था। और सीआरपीएफ भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए। तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का सीआरपीएफ के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से

हैं इस तरीके के, सीआरपीएफ ने लोगों के जीवन जीवन को छुआ है जहाँ भी, आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो जो सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है। और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका।

0: जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। क्या ऐसा होता है?
1: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एक ना बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर। आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है। आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन करता, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा।
0: शायद समझना
1: जी
0: मुश्किल है, और आपकी बातों से जो आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत,
1: जी जी
0: बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत सा आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा यकीन मानिए अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जबानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुंचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताया।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया। और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी, एक मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
0: हाँ। तो हाँ जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिनाका गीतमाला लेकर आते थे, और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे, और हर एक सप्ताह की उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिनाका गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए।
0: बिल्कुल जी। और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने, अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
1: निसंदेह।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
1: धन्यवाद। जय हिंद।
0: जय हिंद।

श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। हम आकाशवाणी चूरू से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 FM, जहां हम लेकर आए हैं आपका यूथ स्पेशल प्रोग्राम युवानी, जहां आज आप सुन रहे हैं आपके आज दोस्त भावना को
1: और साथ में आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त कोमल दहिया को। तो युवानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

0: जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। और आज है गुरुवार, तो गुरुवार का हमारा सबसे खास सेगमेंट होता है बातें रेडियो की। दोस्तों, मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में भी एक आवाज ऐसी है जो सीधे हमारे दिल तक पहुंचती है, और वो आवाज है रेडियो की। और इसी रेडियो के जरिए हम बातें भी जो है वो करते हैं रेडियो की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास सेगमेंट की।
1: बिल्कुल, कोमल बेसब्री से इंतजार रहता है हमारे श्रोता साथियों को आज के खास सेगमेंट का, जो कि है बातें रेडियो की। दोस्तों, बातें रेडियो की सेगमेंट हर गुरुवार हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए आप सीधे हमारे साथ जुड़ते हैं। हर गुरुवार सुबह आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पर आप अपने जो भी विचार है, अपनी जो भी राय है, वो हमें कमेंट्स के जरिए लिख भेजते हैं, और उसी के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं। हर हफ्ते आपको हर एक दिन एक नया टॉपिक जो है वो दिया जाता है, जैसे कि कभी कुछ भी हो सकता है, आपका आज का दिन कैसा रहा, कभी रेडियो से जुड़ी आपकी बातें, या फिर आज के समय में जो भी नई नई नई चीज़ें आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सब के बारे में आपके विचार क्या होते हैं। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं आज का खास बातें रेडियो की सेगमेंट गुरुवार के दिन। और आज का टॉपिक हम आपको बता दें, जो आपको सुबह ही मिल चुका है, टॉपिक है गाँव में बदलती जीवन शैली, यानी और उसके फायदे और नुकसान। गाँव में आज के समय में जो जो बदलाव आ रहे हैं, आज के लाइफस्टाइल के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके क्या प्रॉफिट्स है, उसके क्या क्या नुकसान हम लोगों को आज के समय में देखने को मिल रहे हैं, ये टॉपिक आप सभी को हमारे आकाशवाणी चूरू के ऑफिशियली पेज के जरिए सुबह आपको दिया गया था। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स के जरिए आपके विचार हमें मिले हैं। इस कार्यक्रम में हम चुनिंदा उन कमेंट्स को शामिल करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सभी श्रोताओं के जो विचार है वो आप तक पहुंच जाए, और उम्मीद भी आपसे यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता हमारे साथ जुड़े, हमारे आकाशवाणी चुरू की ऑफिशियली पेज के जरिए उस सुबह गुरुवार को उस टॉपिक पर आप अपने विचार जो है वो कमेंट करके हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, और ये जो टॉपिक्स होते हैं वो हमारी ही लाइफ से जुड़े होते हैं, जैसे कि आज का टॉपिक है कि गांव में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो किस तरीके से बदल रही है, और उसके फायदे और नुकसान जो है वो हम किस तरीके से देखते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हमारे जीवन से जुड़े होते हैं, वो हर गुरुवार जो है वो हमारे सेगमेंट बातें रेडियो में जो है वो हम आपके साथ करते हैं, और आप अपने विचार जो है वो हमें भेजते हैं हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए।
1: बिल्कुल कोमल, और श्रोताओं आपको बता दें कि हर हफ्ते जो आपको टॉपिक दिया जाता है वो बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही विचार कर और बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट, या यूं कहे कि हमारी लाइफ से रिलेट करने वाला टॉपिक जो है वो आपको दिया जाता है। आज के बदलते समय के साथ हम अगर देखें अभी वर्तमान समय में, तो गांव की जीवन शैली भी तेजी से बदल रही है। जहां पहले सादगी, आपसी मेल जोल और प्रकृति से जुड़ा जीवन गांव की पहचान था, वहीं अब आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट और बहुत सारी नई नई आधुनिक सुविधाएं और साथ ही साथ नई सोच ने गांव को एक नई दिशा दी है। इन बदलावों से शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं में फायदा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरी, खान पान में बदलाव, पुरानी परंपराओं का असर भी कम हुआ है। तो आइए आज के कार्यक्रम में बातें रेडियो की में हम बात करेंगे गांव में बदलती जीवन शैली, फायदे और नुकसान। और आपको बता दें, आवाजें हमारी होगी लेकिन विचार हमारे सभी श्रोता साथियों के होंगे। तो आइए उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना, और फिर शामिल करते हैं प्रोग्राम में सभी श्रोताओं की जो है वो बातें और उनके विचार।

0: जी स्वागत है दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम चल रहा है युवानी और खास सेगमेंट बातें रेडियो की। आइए अब शामिल करते हैं हमारे श्रोता साथियों के विचार जो कि वो कमेंट्स के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। आज का टॉपिक है गांव में बदलती जीवन शैली, उसके फायदे और नुकसान। पहले जुड़ने वाले हमारे साथ श्रोता है राकेश शर्मा, जो हमें लिखते हैं गांव महनसर जिला झुंझुनू से। ये लिखते हैं कि गांव की बदलती जीवन शैली एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि बेहतर शिक्षा, इंटरनेट के जरिए डिजिटल जागरूकता और साथ ही साथ आजीविका के नए साधन। हालांकि इसके नुकसान भी है, जिसमें पारिवारिक मूल्यों का कम होना, शारीरिक सक्रियता में कमी आना और पर्यावरण से दूरी और खेती से मोहभंग होना भी शामिल है।
1: जी बिल्कुल, और साथ ही बदलाव विकास की अनिवार्य शर्त है। गांव की बदलती जीवन शैली में यदि आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी सादगी, स्वास्थ्य और मजबूत सामाजिक ताने बाने को बचाए रखा जाए तो इसे एक सकारात्मक बदलाव कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, इन्होंने जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव बातें यानी कि फायदे और नुकसान जो है वो दोनों अपने विचारों में शामिल किए हैं कि जिस तरीके से हमें जो चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं टेक्नोलॉजी के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उन चीज़ों का जो हमें यूज़ है वो उसी तरीके से करना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित ना हो, बल्कि वो चीज़ें हमें ऐसी अपनानी चाहिए कि हमारी सादगी भी बनी रहे, हमारा स्वास्थ्य भी बना रहे और जो भी हमारे समाज में जो चीज़ें जरूरी हैं उन चीज़ों को बचाए रखें और अपना एक पॉजिटिव तरीका जो है उसके साथ आगे बढ़ते रहें।
0: जी बिल्कुल, और बहुत ही खूब बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की है अपने विचार कि किस तरीके से गांव की बदलती जीवन शैली ने दोनों तरह के एस्पेक्ट आज के समय में जो है हमारे सामने जो है वो दिखाए हैं। सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गाना, फिर जुड़ेंगे अगली श्रोता के विचारों की ओर।

0: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खास सेगमेंट बातें रेडियो की, जिसमें अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे अगले कमेंट्स की ओर। जो अगला कमेंट हमें मिला है विनोद कुमार, जो हमें लिखते हैं गोगा मेड़ी नोहर राजस्थान से।
1: जी, इन्होंने पूरे आकाशवाणी परिवार को खमागणी कहा है और हम भी आपको हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। साथ ही साथ इन्होंने आगे लिखा है कि आज का टॉपिक जो कि है गांव में बदलती जीवन शैली, सुनकर दिल खुश हो गया। सच कहूं तो आज हमारे गांव का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। वो दौर भी था जब खेती की बातें सिर्फ चौपाल पर होती थी, और आज का दौर है जब हमारे गांव का युवा खेत की मेड़ पर बैठकर मोबाइल से दुनिया भर की बाजार भाव और नई तकनीकी देख रहा है।
0: जी बिल्कुल, और साथ ही इन्होंने आगे लिखा है कि पहले जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था, आज वहां वाईफाई की स्पीड में युवाओं के सपने दौड़ रहे हैं। बदलाव बहुत खूबसूरत है, पहनावा बदला है, साधन बदले हैं, पर अच्छी बात यह है कि आज की अपनायत दोरारी धरती का सत्कार और बुजुर्गों की सीख वैसी ही है।
1: बहुत ही खूब कहा है इन्होंने कोमल, की देखने का नजरिया जैसे हम कहते हैं कि वो आपका खूबसूरत होना चाहिए। आज की जो संस्कृति बदल रही है, आज की जो चीज़ें बदल रही है, उसे देखकर आमतौर पर लोगों की जो धारणाएं हैं, जो लोगों की बातें सुनते हैं, वो शायद कुछ ज़्यादा सकारात्मक या पॉजिटिव नहीं होती। सबको लगता है कि माहौल बिगड़ गया है, माहौल ख़राब हो गया है, चीज़ें खराब हो गई है, लेकिन बस नज़रिया चाहिए। आज के समय में जो बदलाव आए हैं उसके उतने ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है जितने की नेगेटिव, और वही खूबसूरत नज़रिया इन्होंने अपनी बातों में जो है वो दिखाया है विनोद कुमार ने। ये जैसे कि इन्होंने कहा कि आज के युवा जो है वो अपने सपनों के पीछे तो दौड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ उनका पहनावा बदला है, साधन बदले हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आज भी उनके बीच अपनापन जो है वो धोरारी सत्कार और बुजुर्गों की सीख जो है वो पहले जैसी ही बनी हुई है।
0: जी बिल्कुल, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, हमारे गांव में जो चीज़ें हमें बड़े बुजुर्गों से सीखने को मिलती हैं, वो चीज़ें आज के टाइम में भी जो है वो हम अपनाए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपनी जो भी चीज़ें हैं पौराणिक जो भी चीज़ें हैं उन सबको लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं।

बिल्कुल। और इन्होंने लिखा है कि आज शाम 5 बजे रेडियो ट्यून करके बैठ जाऊंगा, क्योंकि बातें रेडियो की हो और वो भी आकाशवाणी चूरू पर, तो सुनने का मजा ही कुछ और है। और हम भी उम्मीद करते हैं विनोद कुमार जी, हमारी आवाज़ जो है वो सीधे आप तक पहुंच रही है और आपकी बातें, आपके संदेश हमने हमारे तमाम श्रोताओं तक जो है वो पहुँचा दिया है। और आज नुहर की जो खूबसूरत सी आवाज़ और सकारात्मक सोच है वो आज हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार में जो है वो जुड़ रही है और गूंज रही है।

0: जी दोस्तों, बातें रेडियो की में अब शामिल करते हैं एक अगले श्रोता के विचार जो है हमें लिखते हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। लिखने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। इन्होंने सबसे पहले पूरे आकाशवाणी परिवार को नमस्कार लिख भेजा है और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको भी बहुत सारा नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है ये लिखते हैं, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी परिवार के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी की वजह से ये खूबसूरत समय, ये खूबसूरत पल जो है वो आ पाया है, तो इसके हकदार असली आप ही हैं, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे ये लिखते हैं कि गाँव में बदलती जीवन शैली ने आधुनिकता और सुविधा के नए द्वार खोले हैं, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी आई है। यहाँ इसके प्रमुख फायदे और नुकसान का विवरण जो है वो नीचे बताया गया है। ये फायदे बताते हैं
1: जी, इन्होंने फायदे में लिखा है कि बेहतर शिक्षा और जागरूकता, गांव में स्कूलों की बेहतर पहुंच और इंटरनेट के प्रसार से साक्षरता दर जो है वो बढ़ रही है, जिससे लोग अपने अधिकारों और करियर को लेकर और ज्यादा जागरूक हुए हैं। आधुनिक जो तकनीक है और संचार है उसके जरिए भी जो है वो बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट ने ग्रामीणों को दुनिया से जोड़ा है। डिजिटल बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी अब सिर्फ एक क्लिक पर जो है वो हमें मिल जाती है।
0: बिल्कुल, आगे ये लिखते हैं कि इसके क्या फायदे हैं, तो ये बताते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में भी खूब सुधार हुआ है, जैसे कि आधुनिक चिकित्सालयों, एम्बुलेंस सेवाओं और स्वास्थ्य जागरूकता के कारण गाँव में जीवन प्रत्याशा और शिशु स्वास्थ्य में काफी सुधार जो है वो हुआ है। साथ ही साथ इसके फायदे की अगर हम और देखें तो यातायात और कनेक्टिविटी जो है वो इसका

0: बेहतरीन जो है वो एक उदाहरण है। पक्की सड़कें, परिवहन के साधन के विकास से गांवों से शहरों की दूरी जो है वो कम हुई है, जिससे रोजगार और व्यापार के अवसर जो है वो बढ़े हैं।
1: जी बिल्कुल, ये तो थे फायदे और साथ ही इन्होंने नुकसान जो है वो भी बताए हैं कि पारंपरिक कृषि और रोजगार है उसमें कमी देखने को मिलती है, जैसे खेती में मशीनीकरण है, पारंपरिक ज्ञान के लुप्त होने से ग्रामीण जो रोजगार है वो भी प्रभावित हुआ है और लोग जो है वो कृषि छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। साथ ही साथ खान पान है और स्वास्थ्य पर भी इसका जो असर है वो पड़ रहा है, क्योंकि गाँव में भी फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड खाद्य जो भी पदार्थ हैं उनका चलन और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शहरों और गाँव की दूरी कम हो चुकी है, तो इन सारी चीज़ों का जो गाँव तक पहुँचना है वो और भी आसान हो चुका है, जिससे जो आधुनिक बीमारियाँ हैं वो भी तेजी से अपने पैर जो है गाँव की तरफ पसार रही हैं।
0: आर कोमल, देखिए तो आज के समय में हर एक चीज का असर जो है वो पर्यावरण पर पड़ रहा है
1: जी।
0: तो इन्होंने आगे लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण भी जो है वो इसका एक अहम जो है वो पड़ाव है, जिसके जरिए बहुत सारे नुकसान वो जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि वाहनों की संख्या बढ़ने और प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग से गाँव का स्वच्छ और शांत वातावरण जो है वो प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ सामुदायिक संबंध है उनमें दूरी आई है। ये कहते हैं कि सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली ने लोगों को व्यक्तिगत बना दिया है, संयुक्त परिवार जो है वो टूट रहे हैं और पारंपरिक मेल मिलाप जो है वो कम हो रहा है। बिल्कुल आपकी बातों से जो है हम पूरा एग्री करते हैं लालगिरी गोस्वामी जी, और क्योंकि हर एक चीज के कहते हैं कि दोनों ही पहलू होते हैं और वही दोनों पहलू जो है वो आपने बताए हैं और वाकई में बस जरूरत है हमें इन दोनों जो पहलू है यानी कि जो फायदे हैं और उन नुकसान है उन दोनों को बैलेंस करके किसी भी चीज़ को जो है वो समझने की और उसका सही उपयोग करने की।
1: जी बिल्कुल, और फायदे और नुकसान को मिलाकर इन्होंने अपनी बात जो है वो कहनी चाहिए है कि गांव में आधुनिक जीवन शैली का आना एक विकास का प्रतीक है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो संतुलन है वो बहुत जरूरी है। गाँव को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और प्राकृतिक जो परिवेश है उसको बचाते रखते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ना होगा, यानी जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, आधुनिक जीवन शैली हम अपना रहे हैं और हमारे आसपास जो विकास हमें देखने को मिल रहा है उन सारी चीजों का बैलेंस बनाकर जो है वो हमें आगे बढ़ना है, ताकि हमारा जो प्राकृतिक परिवेश है वो बचा रहे और हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी उस पर हम आगे बढ़ते रहे।
0: बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत विचार जो है इन्होंने सही रखे हैं हमारे सामने कि हर एक चीज के बीच जो है वो संतुलन जरूरी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और भी बहुत सारी बातें शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज।

0: देखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी दोस्तों, स्वागत है प्रोग्राम युवाणी खास सेगमेंट बातें रेडियो की। अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे अगले श्रोता के विचार की ओर। और आज का हमारा खास जो टॉपिक है वो है गांव में बदलती जीवन शैली, उसके फायदे और नुकसान, जिसके बारे में सोशल मीडिया के जरिए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो अपने कमेंट्स के जरिए अपने जो विचार हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और अगला जो विचार है वो हमारे श्रोता साथी के हैं, योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा, जो हमें लिखते हैं बन बगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, इनके विचार जो है वो गांव में बदलती जीवन शैली के बारे में है कि जिस तरह से हमारे शहरों में ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े जो कल कारखाने हैं रोज खुलते जा रहे हैं और विकास के कार्य होते जा रहे हैं, इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके भी विकास जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। सीमेंट के सड़क बनते जा रहे हैं, बारिश का जो पानी है वो संरक्षण में मदद नहीं मिल पा रही है। आज गांव का जो हवा पानी है वो दूषित होने वाला है, इसे हमें बचाना है, तभी गांव की जो मूल स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने अपनी जो ये फायदे और नुकसान की बजाय इन्होंने ये कहा है कि जो चीज़ें शहरों में बढ़ती जा रही हैं, शहरों में इतना विकास हो रहा है तो उनसे जो है वो कहीं ना कहीं गांव में असर पड़ रहा है उन सारी चीज़ों का। तो हमें ये करना है कि जो शहरों में बदलाव हो रहे हैं उन चीज़ों से गाँव की तरफ हम जाके अगर देखें तो उनमें भी बदलाव ही हमें करने हैं, ना कि यूँ हो कि गाँव में कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखने को मिले, क्योंकि गांव जो है वो शहर से जुड़ चुके हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि अब गांव और शहरों में इतना अंतर नहीं बचा जितना कि हम पहले देखते थे। तो इन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें बदलाव की ओर जा रही हैं वो शहरों में हो रही हैं, तो उनका नुकसान ना होकर गाँव में जो बदलाव हैं वो साथ साथ होने बहुत ज़रूरी हैं।
4: जी बिल्कुल। श्रोताओं, बातें रेडियो की में शामिल करते हैं अगले श्रोता के विचार, और वो हमें लिखने वाले हैं सही राम नगर पीथी सर चूरू से। लिखने वाले हैं हरि सिंह नायक, दुर्गा राम बुडानिया, विक्की राठौड़, बीरबल राम मेघवाल। ये लिखते हैं सबसे पहले कि नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आपको भी पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से नमस्कार। और टॉपिक के बारे में ये लिखते हैं कि बदलती जीवन शैली के कारण परिवार सिकुड़ते जा रहे हैं और रिश्ते टूटते जा रहे हैं। लगता है बिना संस्कार व बिना

हम संयुक्त परिवार पर कम और एकल परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं। दादी नानी की कहानियों का आनंद को छोड़कर मोबाइल की दुनिया में आ गए हैं। मन लगाने की बजाय दिमाग लगाने लगे हैं सब, इसलिए डिप्रेशन में रहने लगे हैं लोग। ये बदलती जीवन शैली के कारण ही हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि हम सब बदलती जीवन शैली की चुनौती को चैलेंज कर संयुक्त परिवार का आनंद लें। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सी लाइनों में आपने जो है वो अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आज का युवा, आज का हर एक इंसान जो है वो ये जो चैलेंज हमारे सामने आ रहे हैं, गांव में जो जीवन शैली बदल रही है, उन सबको एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर संयुक्त परिवार की ओर बढ़कर अपने विचारों को बदलकर और आज की नजरिए को, यानी कि इस चीज़ को एक पॉजिटिव नजरिए के रूप में देखकर जो है वो स्वीकार करेगा।

0: जी श्रोताओं, बातें रेडियो की में शामिल करते हैं अगले श्रोता के विचार और वो हमें लिखने वाले हैं फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिलसिला चुरू से। लिखने वाले हमारे रेगुलर लिसनर है संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा, समस्त सोनगरा परिवार ये हमें लिखते हैं। साथ ही साथ ददरेवा से गंगा शिम्पा, उषा अवनी, अक्षय हासिम कुरेसी। श्रोताओं, इन्होंने लिखा है कि गांव में बदलती जीवन शैली आधुनिक सुख सुविधाओं, इंटरनेट और बेहतर कनेक्टिविटी की देन है। इसने शिक्षा के और आय के नए अवसर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर शारीरिक सक्रियता में कमी और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ाई हैं। मशीनीकरण जैसे कि ट्रैक्टर, कंबाइन और वाहनों का उपयोग के कारण लोगों की शारीरिक मेहनत जो है वो घट गई है, जिससे मोटापा और अन्य बीमारियां बढ़ रही है। गांव में भी जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का चलन बढ़ता जा रहा है, जो कि पारंपरिक पौष्टिक आहार की जगह ले रहा है। और दिखावे की संस्कृति और भागदौड़ ने गांव के शांत और मिलनसार माहौल को प्रभावित किया है। गांव में साक्षरता दर बढ़ी है। उच्च शिक्षा और डिजिटल साक्षरता के कारण युवा जागरूक भी हुए हैं। इन्होंने जो है दोस्तों अपने मिले जुले यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्टों पर बहुत ही बखूबी से जो है वो प्रकाश डाला है कि किस तरीके से आज के समय में हमारे जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट है, वो हम लोगों को आपस में बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जोड़ रहा है। उसकी वजह से हमने बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाया है, हमारी इनकम सोर्सेज भी बढ़ी हैं। और अगर वहीं इसके नुकसान देखें तो वही सबसे बड़ा उसका प्रभाव पड़ा है हमारी हेल्थ पर, चाहे वो फिजिकली हेल्थ हो, मेंटली हेल्थ हो, हम थोड़े से अनएक्टिव हो गए हैं। और फूड की वजह से वही उसका एक पार्ट आ जाता है कि खाने की वजह से भी हमारा हेल्थ जो है वो थोड़ा गड़बड़ा रहा है। तो दोनों ही तरह के जो रिजल्ट है इन आज के समय में गांव में बदलती जीवन शैली के बारे में भी इन्होंने लिखे हैं। और एक बहुत ही अच्छा नज़रिया इन्होंने हमारे साथ जो है वो शेयर किया है कि हर एक चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। बहुत ही अच्छी बातें भी आज के समय में हुई है और वहीं उसके नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और अब आपको लिए चलते हैं अगले हमारे कमेंट की ओर। तो वो हमें लिखते हैं हनुमत शिंदे, जो हमें लिखते हैं सांगली महाराष्ट्र से। इन्होंने लिखा है कि गांव में बदलती जो जीवन शैली है उसके फायदे और नुकसान। बदलते जीवन शैली के अनुसार जो है वो गांव में फायदे ही फायदे दिखाते हैं। मतलब इन्होंने जो भी चीजें हैं वो एक पॉजिटिव नजरिए से देखी हैं कि हर गांव में जो है पक्का रास्ता बन चुका है, बिजली पहुंच गई है और गांव पर शहर का प्रभाव भी दिख रहा है। शिक्षा का प्रचार हुआ है, सभी को शिक्षा मिल रही है और खेती में जो बदलाव है वो भी दिख रहा है। अच्छी सड़क की वजह से खेती का जो उत्पादन है वो भी शहर तक पहुंच रहा है और ग्रामीण जीवन में जो परिवर्तन है वो काफी देखने को मिला है। यानी कि इन्होंने अपना नजरिया जो है वो पॉजिटिव वे से जो है वो बताना चाहा है कि बदलता जो भी अब टाइम जैसे बदल रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तो गाँव में भी बहुत सारे ऐसे बदलाव जो है वो हुए हैं जो हमारे लिए जो है वो सही साबित भी हो रहे हैं और गाँव में जो परिवर्तन है वो भी हम सबको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपके जो कमेंट्स हैं वो बखूबी से हम पढ़ भी रहे हैं और आपको सुनवा भी रहे हैं। साथ ही इतने अच्छे विचार, यूं कहें कि पॉजिटिव और नेगेटिव विचार जो है वो हम सबको सुनने को मिल रहे हैं कि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी बदल रही है तो उसके जरिए जो हमारी जीवन शैली है, हमारे गाँव की जीवन शैली है, वो किस तरीके से बदल रही है वो भी हमारे श्रोता साथी हमें बता रहे हैं। और आगे भी बातें यूँ ही जारी है हमारे खास सेगमेंट बातें रेडियो की में। फिलहाल आपको लिए चलते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, बातें रेडियो की में हम शामिल कर रहे हैं हमारी आवाजें, लेकिन विचार हमारी श्रोता साथियों के। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं शादुल सहर।

आकाशवाणी टीम को नमस्कार बोला है और आपको भी पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से नमस्कार। ये लिखते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फायदा और नुकसान दोनों ही होते हैं। गाँव में बदलती जीवन शैली से युवाओं को रोजगार और शिक्षा, तकनीकी और जागरूकता

युवाओं का जो रुझान है वो इस ओर बढ़ रहा है कि फास्ट फूड है और इनके जो स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों पर युवाओं का रुझान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। साथ ही इन्होंने लिखा है कि पर्यावरण

0: दरार आने लग गई है और सोशल मीडिया और आधुनिक जो चकाचौंध है उसके कारण ग्रामीण जो भाईचारा आपसी मेलजोल है वो भी कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हर एक सिक्के के

भी निभाई जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ एक आम नागरिक, एक व्यक्ति को भी इस ओर जो है वो ध्यान देना चाहिए। जैसे ही किसी भी चीज़ की हम जिम्मेदारी ना केवल एक बड़े संगठन पर, ना केवल सरकार पर डालकर हम उस जिम्मेदारी को एक आम नागरिक की तरह अपना कर्तव्य समझकर अगर निभाएं तो शायद उस चीज़ को हम बखूबी पा सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपना

कि हमें हर चीज़ को जो है जितना बदलाव हम महसूस कर रहे हैं उसको इस तरीके से आगे लेकर जाएं ताकि जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, ना ही हमारे स्वास्थ्य पर नुकसान हो, ना ही हमारे पर्यावरण को नुकसान हो। और जितना बदलाव हम शहर में देखने को हमें मिल रहा है उतना ही बदलाव जो है अगर गाँव में हो रहा है तो वो किस तरीके से गाँव में असर डाल रहा है उसको भी हमें देखना चाहिए और उसके प्रति लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो हम बदलाव को आगे की ओर ले जा रहे हैं और किन किन चीज़ों को जो है हम रोकथाम की ओर ले जा रहे हैं।

0: श्रोताओं बातें रेडियो की सेगमेंट में हमें हमारे श्रोताओं के मिले जुले विचार जो है वो प्राप्त हुए टॉपिक गांव में बदलती जीवन शैली पर। श्रोताओं गांव की जीवन शैली तेजी से बदल रही है, आधुनिक सुविधाओं ने शिक्षा रोजगार और जानकारी के नए रास्ते खोले हैं, ये हम सब जानते हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने लोगों की दुनिया से जोड़ा है, ये हम भी बहुत खूबी से जानते हैं। लेकिन साथ ही गाँव की पुरानी परंपराएं, आपसी मेल जोल और प्रकृति से जुड़ाव भी जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। तो बस जरूरत है हमें थोड़ा सा संतुलन बनाए रखने की। जब हम किसी भी चीज के बीच संतुलन स्थापित कर लेते हैं तो बैलेंस लाइफ जीने से हर एक चीज जो है वो बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कोशिश की है हमने हमारे सभी श्रोता साथियों को जो है वो कार्यक्रम में शामिल करने की। और एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि हम जो है वो आपसे गुजारिश करते हैं कि जो टॉपिक हम आपको हर गुरुवार सुबह देते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके विचार जो हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और अगर किसी और बात पर या आपकी पर्सनल व्यक्तिगत किसी भी विचार पर अगर आपने कोई कमेंट या कोई प्रतिक्रिया दी है तो शायद हम उसे हमारे कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाते। तो उम्मीद है आपसे विनती और निवेदन यही रहेगा कि कार्यक्रम में टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो ज़रूर भेजिए। फिलहाल जो है वो समय हो गया है कार्यक्रम से जाने का, और अभी आज्ञा दें आपकी आरजे दोस्त भावना को,
1: कोमल दैया को
0: नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण।

6:10 पर सुनिए देशभक्ति फिल्म में गीत। छह बजकर 20 मिनट का समय रहेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचारों का। हिंदी में प्रादेशिक समाचार

ये समाचार प्रसारण आप आकाशवाणी केंद्र जयपुर अजमेर से सुनेंगे। कार्यक्रम किसानवाणी।

0: इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चाएं, लोकगीत एवं लोक भजन। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम सुनिए शाम 7:30 पर। रात्रि 8 बजे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। रात्रि 8:45 का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। अंग्रेजी में समाचार श्रोता सुनेंगे रात्रि 9 बजे। ये समाचार आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। रात्रि 9:15 पर सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। 9:30 पर श्रोता सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। माफ कीजिए, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम कंट्री वाइड। 10 बजे श्रोता सुनेंगे जयपुर केंद्र से रिले प्रांतीय नाटक। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे। 11:05 पर सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। हम आकाशवाणी चूरू से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी।

सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन। इस देशभक्ति रचना के साथ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया स्वपदात् औपचारिक रूपेण त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। डीके शिवकुमारः नूतन मुख्यमंत्रित्वेन पदभारं ग्रहीष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सिक्किम आरक्षक दलाय राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदत्तवती। अत्रांतरे सिक्किम राज्यं पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। होर्मुज जलडमरू मध्यस्य समीपे आक्रमणान्तरं अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये अवसादः वर्धितः। गृहमंत्री अमित शाहः गांधीनगरे जनसभायाम् अवैध प्रवासिनां देशात् निष्कासनार्थं सर्वकारस्य दृढसंकल्पं पुनः प्रत्यपादयत्। अपि च बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां पीवी सिंधुः तथा च लक्ष्य सेनः सिंगापुर ओपन इत्यस्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इत्यसौ अद्य लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिक रूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् संबोधयन् सः स्वयं प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिक रूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमंत्रिणः पदभारं ग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 37% अधिक विधायकानां समर्थन सहचारेण कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतिना स्वकीयं अरुचिं प्रकटयन् प्रोक्तवान् यत् सः राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। सिद्धरमैया इत्येषः 23-2000 वर्षे द्वितीयवारं कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री संजातः। इतः पूर्वं सः 23-18 यावत् मुख्यमंत्रित्वेन कार्यम् अकरोत्। सः राज्ये 8 वर्षाणां कार्यकालद्वयं पूरयित्वा सर्वाधिक समयमुपविशता मुख्यमंत्रित्वेन गौरवम् अर्जितवान्। मुख्यमंत्रित्वेन वित्तमंत्रित्वेन च तेन राज्यस्य 17 आयव्ययकानि उपस्थापितानि। तस्य त्यागपत्रेण राज्ये सुदीर्घकालतः जायमानः सत्ता संघर्षः समाप्तः। अत्रांतरे राज्यस्य उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः कर्णाटक कांग्रेस दलस्य वरिष्ठतमेषु नेतृषु कश्चन प्रमुखः अस्ति। 23-2000 विधानसभा निर्वाचने कांग्रेस दलस्य महत् विजये तेन प्रमुखा भूमिका निर्व्यूढा आसीत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षाः अधिकं नागरिकाभिमुखा भवेयुः। सहैव समाजस्य दुर्बल वर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः अद्य प्रातः गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरणं संचलने सिक्किम आरक्षक दलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय संबोधितवती। तया राज्ये विधि व्यवस्थायाः पालने सहैव आपद प्रबंधने सिक्किम आरक्षक दलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: अत्रान्तरे उल्लास योजनायाः अन्तर्गतं सिक्किम राज्यम् आधिकारिक रूपेण पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। घोषणेयं यावत् गतदिवसे गंगटोक नगरे राष्ट्रपतिः मुर्मुः इत्यस्याः गरिमामय उपस्थितौ सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे विहिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये जायमाना शिथिल युद्ध विरामावस्था इदानीं गंभीर संकटे समापतिता, यतः हि द्वाभ्याम् अपि पक्षाभ्याम् होर्मुज इत्यस्य समीपे परस्परं सैन्य आक्रमणानि कृतानि। अमेरिकी सेनायाः कथनमस्ति यत् तया ईरान देशस्य चत्वारि आक्रामक ड्रोन विमानानि निपातितानि, तथा च बंदर अब्बास क्षेत्रे स्थिते ड्रोन नियंत्रण केन्द्रे भीषण प्रहारः कृतः। अत्रांतरे ईरानस्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स इति दलेन अपि एतस्य प्रहारस्य प्रमाणत्वेन प्रोक्तं यत् प्रतिकार स्वरूपेण तैः अमेरिकी सैन्य शिविरे आक्रमणं विहितम्। कुवैत प्रशासनेन पूर्वमेव सूचितम् आसीत् यत् ते स्वकीये क्षेत्रे शत्रुपक्षस्य ड्रोन आक्रमणानां दृढ प्रतिकारं कुर्वन्ति। अस्याः सद्यो जातायाः सैन्य उत्तेजनायाः कारणेन वाशिंगटन तेहरान नगरयोः मध्ये युद्ध विरामस्य विस्ताराय जायमानैः कूटनीतिक प्रयासैः सहसा महती क्षतिः अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य पुनरेकदा अवैध प्रवासीनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षा सुदृढीकर्तुं च सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि दृढतया प्रतिपादितवान्। गांधीनगरे 44.3 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्म वार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाह अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामीनां ओलंपिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्व आरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षा करिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अद्य CBSE इति द्वादश कक्षायाः मूल्यांकनं प्रक्रियायां सहैव एतस्य नूतन पटलाधारित अंकन प्रणाल्यां च जातानां प्राविधिक त्रुटीनां च संज्ञानं गृहीतवान्। मंत्रणां एतेषां विसंगतीनां विषये छात्राणां शंका समानार्थं दृढ आश्वासनं प्रदत्तम्। शिक्षामंत्री प्रोक्तं यत् इयं पटलाधारित अंकन प्रणाली पारदर्शितां सुनिश्चेतुं कश्चन प्रगतिशील उपायात्मक मञ्चः वर्तते। सः नवदिल्ल्यां CBSE अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विधाय अनन्तरं वार्ताहरान् संबोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे

0: अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: पुर ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यतनः दिवसः भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्णः आसीत्। भारतस्य प्रमुख क्रीडकाः लक्ष्य सेनः, पीवी सिंधुः, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी इत्यनयोः पुरुष युगलदलं तथा च ध्रुव कपिला तनीसा क्रेस्टो इत्यनयोः मिश्रित युगलदलं च स्व स्व प्रतिस्पर्धासु विजयं प्राप्य प्रागुपान्त्य चक्रे प्रविष्टवन्तः। महिला एकल क्रीडायां षोडश चक्रे पीवी सिंधु जापान देशस्य रीको गुंजी 21:09, 21:12 इत्यंकांतरालेन पराजितवती। आगामी स्पर्धायां सा दक्षिण कोरिया देशस्य एनके यंग इत्यनेन सह स्पर्धिष्यन्ते। अत्रांतरे पुरुष एकल क्रीडायां थाईलैंड देशस्य द्वितीय वरीयता प्राप्त क्रीडक कुनलावुत विदितर शारनः स्पर्धायाः आरंभे एव आहतो भूत्वा क्रीडांगणात् बहिर्जातः, येन लक्ष्यसेनः आसयान स्वकीय स्थानं सुरक्षितवान् इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी। पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीटवेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में आज जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को जल और शरबत पिलाया गया। जैसलमेर में अभियान के तहत भू जल संरक्षण विभाग की ओर से जल संरक्षण शपथ, पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। सवाई माधोपुर में आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जल संरक्षण कार्यों में उद्योग जगत, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया गया। राजसमंद में उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर पानी बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भरतपुर जिले में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन

0: पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने यह स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के तहत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों की नियुक्ति करेगा। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सकेगा। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना और प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों, खिलाड़ियों की भागीदारी और वास्तविक समय समन्वय के लिए अधिक प्रभावी योजना बनाने में सक्षम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान में प्रदेश ने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। 24 मार्च से शुरू हुए इस अभियान में 2 महीनों में राज्य में करीब 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और 35,000 से अधिक नए रोगियों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि निरामया राजस्थान के विजन के तहत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग, त्वरित जांच, जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा, जन भागीदारी, तकनीक और संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर हम टीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में काम कर रहे हैं। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा देशभर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहर और कस्बों में सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजा की नगरी अजमेर में भी ईद उल अजहा के मौके पर नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र 4 बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में भी ईद उल अजहा का पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाजारों में त्योहारी खरीदारी और चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कुलपति पद पर रहते हुए अनियमितताएं करने के आरोप में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी किए हैं। राजभवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये आदेश राज्य सरकार के परामर्श के बाद जारी किए गए हैं। वहीं एक अन्य आदेश में राज्यपाल ने राजुवास जोबनेर के कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को अपने कार्य के साथ-साथ बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के आदेश दिए हैं। वहीं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एनके पांडे को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर नौतपा के दौरान तेज गर्मी का असर बना हुआ है। सभी शहरों में बढ़ते तापमान और लू के असर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। वहीं राज्य के 25 से अधिक जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान दिन का पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर और भरतपुर में आज दोपहर बाद हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ. राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीट वेव और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है।
3: हीट वेव का यह दौर अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है।

0: तेज हवाओं के साथ में कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान राज्य के कई भागों में तेज मेघगर्जन, तेज अंधड़, तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
1: मानसून के आने से पहले कोटा जिले में वन विभाग ने बड़े स्तर पर पौधा रोपण की तैयारी शुरू कर दी है। जिले के मंडारा रेंज में इस बार पारंपरिक तरीके के साथ साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ाने के लिए 5 लाख सीड बॉल तैयार की जा रही है। इन तैयार बीज की गेंदों को ड्रोन और श्रमिकों के माध्यम से जिले के वन क्षेत्रों में फैलाया जाएगा। इन सीड बॉल्स में अर्जुन, रौंज, खैर और कुमठा जैसी स्थानीय प्रजातियों के पौधों के बीज शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मिट्टी, गोबर और राख के मिश्रण से तैयार ये बॉल्स बीजों को धूप, कीड़ों और पक्षियों से सुरक्षित रखती हैं। बंजर और दुर्गम इलाकों के लिए ये तकनीक बेहद सस्ती और प्रभावी साबित हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी। पश्चिमी भागों में अगले 1-2 दिन हीटवेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। कुर्बानी का प्रमुख इस्लामिक पर्व ईद उल अजहा आज जिले भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह फर्ज की नमाज के बाद से ही विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में शहर की मुख्य नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए। वहीं एमआई रोड और जौहरी बाजार सहित सभी ईदगाहों में अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। घर घर में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। शहर की बकरा मंडियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी के अवसर पर बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2000

2020 का शुभारंभ किया। 25 मई से शुरू हुआ यह अभियान 5 जून तक चलेगा। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए जल संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में ग्राम स्तर तक नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर, चित्रकला प्रतियोगिता

और पिछले सालों में लगाए गए पौधों के सत्यापन कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने हरियालो ऐप के माध्यम से पौधों की जियो टैगिंग एवं लाइव फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड करवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को लगाए गए पौधों की जीवितता को सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भी पौधरोपण को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इस मॉनसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश भर में जून माह एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य मलेरिया उन्मूलन की दिशा में जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, मजबूत सर्विलांस और समय पर जांच तथा उपचार सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी जून माह में प्रदेश में व्यापक स्तर पर रोकथाम एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि ग्राम स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां, रैली, विद्यालयों में कार्यक्रम, प्रचार कार्यों के द्वारा मलेरिया के कारण और बचाव के उपायों की जनता को जानकारी दी जाएगी। जयपुर में डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून की शिक्षा सीधे तौर पर समाज से जुड़ी शिक्षा है। इसका उपयोग विद्यार्थी जरूरतमंद, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने विधि शिक्षा में राष्ट्र और समाज हितों को प्राथमिकता देने और इस दिशा में उच्च संवैधानिक मूल्यों के साथ प्रदेश को अग्रणी बनाने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने दीक्षा प्राप्त कर 25,000 से अधिक विद्यार्थियों की डिग्रियां डिजी लॉकर में कंप्यूटर का बटन दबाकर लाइव की। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार को ब्रिटेन की संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट के लिए विशेष आमंत्रण प्रदान किया गया है। ये आमंत्रण उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से दिया गया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में बीते दिनों फिट इंडिया साइकिल संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष आयोजन की थीम कॉमनवेल्थ डे 2030 रखी गई, जिसमें खिलाड़ियों, अधिकारियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्टेडियम परिसर के चारों ओर आयोजित साइकिल रैली रही। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों में शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली और कॉमनवेल्थ खेल 2030 के प्रति जागरूकता फैलाना था। इसके साथ ही जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

पहले आज की खास खबर प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई कक्षा 12 री परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया माए विसंगतियां सु संबंधित पढेसरियां री सगली शिकायतां रे समाधान रो दियो आश्वासन ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर माए अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है अर राज्य री घनकर ठोड़ा माथे तेज गर्मी रो असर जारी पश्चिमी हलका माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रेवन रो पूर्वानुमान

समाचारों रे साथे मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार प्रदेश में चल रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जा रही है आ गतिविधियां रो लखस इन अभियान सु 32 लोगां ने जोड़नो और जल संरक्षण रे प्रति जागरूकता बढ़ानो है इनी कड़ी माए झुंझुनू जिले रा नवलगढ़ माए जन जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया कार्यक्रम माए आया लोगां ने पौधा बांटर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो गयो भीषण गर्मी ने देखता थका राहगीरां ने पानी और शरबत पिलायो गयो जैसलमेर माए अभियान रे तहत भू जल संरक्षण महकमारी कानीसू जल संरक्षण शपथ पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ सवाई माधोपुर माए आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत जिला कलेक्टर कलेक्ट्रेट माए कार्यशाला राखी

0: इन कार्यशालामाएं जल संरक्षण कामामाएं उद्योग जगत स्वयंसेवी संस्थावां और सामाजिक संगठनारी सक्रिय सहभागिता माथे जोर दियो गयो। राजसमंद माएं उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ने लेर पानी बिजली री आपूर्ति स्वास्थ्य सुविधावां और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री प्रगति री समीक्षा करी। वणा इन अभियान ने जन आंदोलन बनावण री जरूरत माथे जोर दियो। भरतपुर माए भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पडेसरिया ने आश्वस्त करयो कि सीबीएसई री कानिसू शुरू करी जी ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम बत्ती पारदर्शिता पक्की करने रे लखसू शुरू करी जी है। एक चौकी पहल है। श्री प्रधान नवी दिल्ली माए सीबीएसई रा अहलकारा रे साथे बैठक रे पाछे खबर नवी सासू बणतल माए आ बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं री परीक्षा रे पुनर्मूल्यांकन पोर्टल माए ओएसएम माए विसंगतियां और तकनीकी खराबी ने लेर वणा पडेसरिया ने आश्वस्त करयो कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया रे चालता सगली शिकायतां रो समाधान करयो जावेला।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा री संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। एनटीए रे मुजब परीक्षावां अब 31 मई 6 और 7 जून ने राखी जावेली। आज होवण वाली परीक्षा ईद उल अजहा रे कारण पुनर्निर्धारित करी जी है। एनटीए बतायो कि दीतवार ने परीक्षा देवण वाला उम्मीदवारा रा प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और अने एनटीए री आधिकारिक वेबसाइट सु डाउनलोड करया जा सके है। 6 और 7 जून ने परीक्षा देवण वाला बाकी उम्मीदवारा रा प्रवेश पाना भी बेगाई जारी करया जावेला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम रे तहत राष्ट्रीय खेल संघामाए सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारारी नियुक्ति करेला। इन पहल रे माध्यम सु राष्ट्रमंडल खेल 2030 री तैयारियां ने चोखो बनायो जा सकेला। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहो कि इन पहल रो लखस विशिष्ट डिजिटल प्रणालियां ने सुव्यवस्थित करनो और होड़ा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरां और खिलाड़ियां री भागीदारी और साचे वक्त रे समन्वय खातिर बत्ती प्रभावी योजना बनावण माए सक्षम करनो है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान माए खास उपलब्धियां हासिल करी है। 24 मार्च सु शुरू हुआ इन अभियान माए 2 मीना माए राज्य माए करीब 19 लाख लोगों री स्क्रीनिंग करी जी और 35,000 सु 32 नुआ रोगियां री पहचान करी जी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि निरामया राजस्थान रे विजन रे तहत टीबी जड़ी गंभीर बीमारी रे उन्मूलन खातिर स्क्रीनिंग तुरंत जांच जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता रे प्राथमिकता दी जा रही है। वणा कहो कि जन भागीदारी तकनीक और संवेदनशीलता रे साथ स्वास्थ्य सेवावां मुहैया करार आपा टीबी मुक्त राजस्थान री दिशा माए काम कर रिया हां। कुर्बानी रो तिमार ईद उल अजहा देश भर माए धार्मिक उचास रे साथ मनायो जा रियो है। प्रदेश माए जयपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा शहर कस्बा माए सुवारे ईदगाह और मस्जिदा माए ईद री नमाज अदा करी जी। बाद में लोगा एक दूजे सु गले मिलर ईद री मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजारी नगरी अजमेर माए भी ईद उल अजहा रे मौके माथे नमाज रे पाछे लोगा एक दूजे ने मुबारकबाद दी। और ब्यूरो माणा खबर नवीसु।
2: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र 4 बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: जोधपुर सवाई माधोपुर और सिरोही माए भी ईद उल अजहा रो पर्व हकीकत रे साथे मनायो जा रियो है। इन मौके माथे बाजारा माए त्योहारारी खरीदारी और चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कुलपति पद पर रहता थका अनियमितता रेकार्ड ने और

0: स्वरूप माए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप ने पद सू तुरंत हटाने रा हुकुम जारी करया। राजभवन सू जारी विज्ञप्ति रे मुजब ए आदेश राज्य सरकार रे परामर्श रे पाछे जारी करया गया है। वटीने एक दूजे आदेश माए राज्यपाल राजूवास जोबनेर रा कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा ने काम रे साथे साथे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रा कुलगुरु ने अतिरिक्त कार्यभार संभालने रा हुकुम दिया है। वटीने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर एन के पांडे ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय रो अतिरिक्त कार्यभार दियो गयो है। और अब है मौसम। प्रदेश रे घनकर थोड़ा माथे नौ तपारे चालता तेज गर्मी रो असर बनियोड़ो है। सगड़ा शहरा माए बदता तापमान और लू रे असर सू जनजीवन प्रभावित वेरियो है। दिन रे बखत सड़का माथे अघोषित कर्फ्यू जड़ा हालात बनियोड़ा है। लाड़ला 24 घंटा माए प्रदेश माए सबसू बत्ती तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर माए दर्ज करी जो। वटीने राज्य रा 25 सू 32 जिला माए लाड़ला 24 घंटा रे चालता दिन रो पारो 42 डिग्री सेल्सियस सू ऊपर दर्ज हुयो। श्रीगंगानगर और भरतपुर माए आज दोपहरा पाछे हल्की बिरखा होने सू लोगा ने गर्मी सू थोड़ी घनी राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो के प्रदेश रा पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रहने री आस है।
1: हीट वेव का ये दौर अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है।

0: तेज हवाओं के साथ में क्योंकि हल्की बारिश की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान राज्य के कई भागों में तेज मेघगर्जन, तेज अंधड़, तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
1: मानसून रे आवण सू पहलियां कोटा जिला माए वन महकमो मोटे स्तर माथे पौधा रोपण री तैयारी शुरू कर दी है। जिलेरा मंडाणा रेंज माए इन बार पारंपरिक तरीका रे साथे साथे आधुनिक तकनीक रो प्रयोग करर हरियाली बधाने रो लक्ष्य राख्यो गयो है। इनरे तहत दुर्गम और पहाड़ी खेतरा माए हरियाली ने बधाने खातिर 5 लाख सीड बॉल तैयार करी जा रही है। आ तैयार बीज री गेंदा ने ड्रोन और मजूरा रे मार्फत सू जिला रे वन खेतरा माए फैलायो जावेला। आ सीड बॉल्स माए अर्जुन, रोंज, खैर, कमुठा जड़ी स्थानीय प्रजातियां रा पौधा रा बीज भेड़ा है। ध्यान जोग है कि मिट्टी, गोबर और राख रे मिश्रण सु तैयार आ बॉल्स बीजा ने धूप, कीड़ा और पंछियां सु सुरक्षित रखे है। बंजर और दुर्गम इलाका खातर आ तकनीक बेहद सस्ती और प्रभावी साबित वेरी है। प्रदेश माए 1 से 30 जून ताई बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी रे खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलायो जावेला। इन अभियान रो लक्ष्य बाल श्रम और बाल तस्करी जड़ी गंभीर सामाजिक बुराइयां माते प्रभावी नियंत्रण स्थापित करनो और पीड़ित टाबरा रो पुनर्वास पक्को करनो है। अभियान रे प्रभावी संचालन रे खातिर सगला जिला रा पुलिस अधीक्षका ने हुकुम दिया गया है। अभियान रे तहत होटल, ढाबा, ईंट भट्टा, फैक्ट्रियां, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल और अस्थायी बस्तियां माए रह रिया टाबरारी स्क्रीनिंग करी जावेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई ने आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। आ इन मासिक रेडियो कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। इनरे खातिर श्रोता आपरा टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 माथे भेज सके है। नरेंद्र मोदी ऐप और माय जीओवी ओपन फोरम रे माध्यम सु भी विचार भेजा जा सके है। ए सुझाव काले ताई स्वीकार करया जावेला। अजमेर रा किशनगढ़ एयरपोर्ट सु हवाई यात्रियां रे खातिर इंडिगो जुलाई माह सु 2 नवी उड़ान सेवावां शुरू करन जारियो है। किशनगढ़ ने दिल्ली और नोएडा सु जोड़न वाली आ नवी फ्लाइट्स रे शुरू होने सु अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर और आसपासे री बड़ी आबादी ने बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेली। एयरपोर्ट डायरेक्टर बी एस मीणा बतायो कि 1 जुलाई सु दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू वेली। आ उड़ान सप्ताह माए 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार ने संचालित करी जावेली। इनरे अलावा 2 जुलाई सु नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू करी जावेली। आ सेवा सप्ताह माए 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ने संचालित वेली। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रे माए भारत केंद्र कानीसू सवाई माधोपुर माए वीर सावरकर जयंती मनाई जी। छात्रपति शिवाजी युवा मंडल री कानीसू राखी जो जयंती जलसे माए सावरकर रे राष्ट्र निर्माण माए योगदान ने याद करता हुआ संगोष्ठी और चित्रकला होड समेत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी। होड माए विजेतावा ने स्मृति चिन्ह देर सम्मानित करो गयो।

0: जैसलमेर माए भी सावरकर जयंती माथे न्यारी न्यारी होड़ा आर संगोष्ठी राखी जी इन मौके माथे घनी तादाद माए मौजूद युवावा ने पर्यावरण संरक्षण री शपथ भी दिलाई जी और खास खास खबर आखिर माए एक कर फेरू सुनो प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई कक्षा 12 री परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया माए विसंगतियां सु संबंधित प्रदेशरियां री सगली शिकायतां रे समाधान रो दियो आश्वासन ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर माए अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है अर राज्य री घणकर ठोड़ा माते तेज गर्मी रो असर जारी पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रेवन रो पूर्वानुमान इंडे साथे ही प्रादेशिक समाचार रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो वयो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करयो जावेला नमस्कार
1: आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर इस समय शाम के ठीक 7 बज चुके हैं लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहा है?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
0: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है, एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है, और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता।
4: और भाई किसने कहने शुरू मोकला मोकला?
5: राम राम
4: राम राम तेजा भाई, राम राम
5: राम राम राम राम कृष्णा भैया, राम राम।
4: तो तेजा भाई, आज तो देखो गर्मी मोकली पड़ने लग गई थे, तो गर्मी को पूरा जाप तो करके आया हो?
5: मैं गा बोला तो के आपको सागर कहना है तो के कान और गुद्दी गुद्दी ढकेड़ा

0: तो क्यों बचाव रहे हो ताती लुवांगो भैया तो कहना तो वही है कृष्णा भैया के भाई यान की बढ़ते पड़े ने तो भी कमा जरूरत तो है ने बहुत ज्यादा जरूरी है ना जल्दी बाहर निकलना चाहिए
1: सही है
0: नहीं तो आपको लुक क्यों पड़े हो रहे हैं सेदना को नहीं हो
1: भाई देखो के गर्मी हो चाहे सर्दी हो पर काम धाम तो देखो अचानक हो ही जा
0: हाँ अचानक हो जाए बहुत ज्यादा जरूरत तो है ना जल्दी भाई निकले नहीं नहीं तो आपको दिन की आथन का ही काम लोग काट लेने
1: हाँ।
0: अब दो फारे की लू चाल यहाँ कमाई ने साधन आपको सागे लेके रखना चाहिए पानी करना हुआ है कब बोलता हूँ कान कून ढकेड़ा हुए और ठावड़ी सी बात है कि सूती कपड़ा जो पहरे ने तो आ मान के चलो के भाई गर्मी लागने की संभावना कम ही रहे
1: भाई कहने को मतलब है कि मिनख ने मौसम के सागे जिद नहीं करनी चाहिए हाँ। कई के मान लो चोखे शरीर का मिनख हो रे ने सर्दी की परवाह करें ने गर्मी की परवाह करें मान के बोले मानने का ही गर्मी लागे तो आज की लापरवाही है बा देखो के किदन के दे फोड़ा गाल जा
0: गालेड़ी हो है तो
1: अब ये की गर्मी पड़े आपने तापमान मान लो के 45 डिग्री के लटे चटे रहे कद एक दो डिग्री ज्यादा कद एक दो डिग्री कम और 40 से ऊपर जो तापमान हो वो देखो के आपने शरीर के लिए ऐसे ही नहीं हुए दो पारी के मायने चलन लाग जान लू और अपन जगह कपड़ा पहरा बे देखो के जे थे सुत्तू की बात की तो सुत्तू कपड़ा था ने 100 में से कोई 8-10 मिन खांगे ला देगा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बाकी तो सुत्तू कपड़ा तो रही कोई
0: हाँ।
1: और जगह दूसरा कपड़ा बे देखो पतला बहुत है बांग मायने हवा सीधी सीधी मायने लाग गए गर्मी
0: प्लास्टिक का कहा है कॉटन काटन बनेड़ा है ना जिसका प्लास्टिक का
1: सेन गुनगुने
0: है तो एम के है कि आ तो गर्मी बढ़ावने वाली चीज है
1: बढ़ावने वाली चीज है
0: सर्दी में तो ठंडा रहे और गर्मी में ताता हो
1: जाए ताता रहे उल्टा रहे तो
0: हाँ जबकि आपने सूती कपड़ा है ना पहले तो क्या होगा किसी ना भाया खद्दर का बनाता हो खद्दर का पहरिया करता
1: और हो ही कोनी कपड़ा
0: हाँ अब खद्दर सस्ती खद्दर के करती के पसीना ने सोस सोस के अरे एकदम डील में ठंडो रखती
1: कपड़े कड़क बना देती
0: कड़क बना देती एकदम तो भी उनके है कि सूती कपड़ों एक तो शरीर के एलर्जी वगैरह अरबे को नहीं हुए और एक के है सर्दी के मां सर्दी कौन लागन दे और गर्मी में गर्मी कौन लागन दे
1: सही है
0: कि तो फायदा हो गयो
1: फायदा हो गयो सागड़ हुई
0: अब के है अजा सूती वाला कपड़ा है ना जका जे आपा पुराना हो जा पाठ जा तो बे गड़ भी जाए मांगी रेत हो जा क्योंकि बे आपने धरती उतार बैठा है आजकल बुरशेट बारशेट पैंट पांच पहरे ने तो ए तो के केमिकल का कपड़ा है ना ए ने तो कोई काम आवे ने कोई बात है ने गले जमीन में जो दबे रह जाए तो 10 साल बाद में बिछो बिछो लाज जाओ
1: लाज जा सही है
0: तो आपने कोशिश करा कि भाई सूती कपड़ा ज्यादा पहरागा ना तो अपना जका कपास उत्पादक किसान है ने बांग के लिए भी बढ़िया रहेगा
1: हाँ 5 रुपए की बांगी भी आई बढ़ती हाँ, रहेगा
0: और कपड़ा बनाने वाला जगह लोग बाग है ना पहले तो देखो हाथ हूँ बनाता कपड़ा काट की खड़िया होती वहां कपड़ा बनता खेसला
1: कामड़े
0: कामड़े चादर है और हाथ को कपड़ो बनाए डो अभी की होटी को नहीं अब आजकल हाथ को कपड़ो बनाए डो 1000-1500 रुपए मीटर का लगे
1: अरबी फैशन भी को ला दे लेने और कौन करे आजकल तो देखो मशीन नई नई डिजाइन कर ले मार्केट के मायने जावा तो यहाँ डिजाइन दे के फेरी पसंद करें तो बात तो रही
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: खैर जमानो तो देखो तकनीक को आगे और मशीन के बिना तो काम चले भी को नहीं पर फेरू भी आपा मौसम के हिसाब से कोई भी काम धाम करा तो वो चोखो लगे और ई बखत के मैं जे मान लो आपा सूती कपड़ो नहीं भी पहन सका तो कम से कम आपा सूती कोई तोलियो जरूर सी
0: बिल्कुल रखा
1: बा बहुत ही जोर की चीज आपने शरीर को जो को मुख्य पार्ट वो देखो सिर है और सिर ने अगर आपा मान लो तोलिए से ढक के बाहर निकला तो वह जल्दी सी आपने शरीर ने गर्मी से देखो बाकी तो आप देखो के शरीर है वो भी गर्मी के हिसाब से हो जाए रात दिन आप काम करा तो शरीर तो देखो उन्हों भी लाजमी है और किसान मिनक तो भी देखो के 9-10 बजे तक खेत के मायने काम करें धीरे धीरे घर आवे तो
0: अरे पहले तो कृष्णा भैया को बेरो पड़तो ने मोबाइल में भी लोनता दात को नहीं जो तापमान को ही है बेरो को पड़ता हो गए कितो गए बस ये करता बैठे बैठे बोले आज तावड़ ठीक हो रही,
1: आज गर्मी ज्यादा है,
0: आज

0: ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਏ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਗਏ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਿਤੋ ਹੈ
1: ਕਿਤੋ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਪੈਰ ਡੁੱਬੋ 50 ਨਹੀਂ ਛੇਕ ਜਾਤੋ
0: ਛੇਕ ਜਾਤੋ ਛੇਕ ਜਾਤੋ अच्छा श्याले के मायने तगरा में और बर्फ घनखरी बर जमेड़ी लाती है ये मेरे बोले हूं तो माइनस में है के कहता हूं रट पड़ा है तो पानी जम गयो आज
1: पानी जम गयो
0: है ना तो की है के बिक बेरो पड़ जाने को ओ तापमान तो बहुत ज्यादा है जब आदमी का टेंशन क्यों ज्यादा हो जाए
1: ज्यादा हो जाए भाई वो बुढ़िया कह रहे थे याद बन गए के जा सांप लो डंग मार गयो जे बठे छिपकली दी की ने जे के बोले छिपकली है
0: सही बात है
1: और छिपकली थोड़ी सी जे मान लो खागी जे दांत कटाए दी और फिर जे सांप दिख गयो तो वो काले सांप खा गयो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो भय भी एक अलग चीज हो
0: तो इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए फिर दूसरी बात भी आप करा के आप बात करी कपास उत्पादक किसानों की खेती बाड़ी के मायने आजकल की एक इतनी ज्यादा स्टार्टअप खुलना चालू है कि नया जका टबर है जका खेती बाड़ी की पढ़ाई करी है या पढ़ाई नहीं करी है अभी खेती बाड़ी के सारे रेड़ा है किसान का बेटा तो खेती बाड़ी आदि तो आवी
1: है सीख जाए बचपन में ही सही है
0: तो वे अगर नौकरी वगैरह गेर भाज रहे हैं दुख पा रहे हैं बेरोजगार है तो बन की है कि काम धंधा इन तरीके का शुरू करना चाहिए आज किसना होया देख रहे होते रेत लेके रेत राख न गोबर न माटी सो क्यों बिके
1: सो क्यों बिके बेचनी हो चाहिए
0: बेचनी हो चाहिए
1: तेरी को चाहिए
0: बिल्कुल
1: भाई वो तो गोबर है देखो सीधो बेचार बिन्ने जे तैयार करगी बड़ी ऐसी खाद बना के जे पैकिंग कर लिया
0: आपने सब्जी की दुकान पर बड़े शहर है ना शिकर शाकर कई जगह देखा मैं तो सब्जी की दुकान के ऊपर पिछड़ा लसन की पुड़िया अदरक की पुड़िया पुदीनो हरे पिछड़े की पुड़िया धनिया हरे धनिया की पुड़िया छोटी छोटी पुड़िया है तो सब्जी यार के न तो लसन छोलना पड़े न बांटना पड़े वो एकदम पुड़िया ले जाए आपकी सब्जी सब्जी बनावा भी मैं घेर दे तो ऐ तरीके की पुड़िया आ गई तो वो एक स्टार्टअप ही तो हो गया
1: हां अब तेरे को भाई जकी मान लो के 1 रुपए की चीज है
0: हां
1: 10 रुपए में बेच लो
0: बिल्कुल
1: बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी
0: हां भी पुड़िया पड़िया बन डिजाइन बनानी वो काम करनो भी बेगो शुरू हो गयो तो ओ कृषि रिलेटेड काम हो गयो
1: हां तकनीक है
0: ना ये आपा जा कोई कचोरी समोसा वगैरह आजकल देखा आगे होटलों के ऊपर जकी चटनी वगैरह डाल लेने तो वो चटनी का भी छोटा छोटा पुड़िया सा आ गया
1: पुड़िया सा आ गई
0: है ना
1: पांच समोसे ले पांच पुड़िया गेर दी
0: पांच पुड़िया गाल दी भी मैं तो किन कोई कोथली में गालने की जरूरत पड़ी ने कोई चटनी शीशी में गालने की जरूरत रही मैं पुड़िया पकड़ा दी
1: सही है
0: मिठो ले चाहे अपने मिर्चा ले तो वो भी एक स्टार्टअप ही तो है के अब इन बनाने वाले आदमी आपकी मजदूरी करे
1: करे
0: इन तरीकों भी बहुत सारी चीज है अब झाड़ू है झाड़ू हर घर में काम आवे है और आजकल तो महंगी भी बहुत रही है 100 से 150 रुपया तड़ी झाड़ू का ली
1: 100
0: तो अभी तो खेती बाड़ी का सिस्टम है
1: बस बहुत वो तो बात चीज तो बठू बने पर बिने
0: अब बिन किए के जका लोग बाग ओरा बना दी और स्टार्टअप में किए के अपना जगह बेरोजगार युवा मोटियार जगह है जगह खेती बाड़ी की जानकारी आदि प्रति रख रही है बे ई लाइन में कोनी आया बे ई लाइन में आना शुरू हो जाएगा ना तो क्या हुआ कि हरेक गांव में छोटा छोटा लघु जो हो जाए छोटा कोई लकड़ी को काम कर रहे है कोई पत्थर को काम कर रहे है कोई चटनी को काम करे कोई दाल को करे कोई आटे को करे है इन तरीके का काम हो जाए तो छोटा छोटा उद्योग बड़ी कंपनियां फेर के बाहर संपर्क करना चालू कर दे
1: भाई चालू भी कर दे फिर
0: हब बन गया अब बड़ी कंपनियां आपने कद आओगी कि भाई बन माल चाहिए कि भाई फलानी चीज बाजार में बिके बड़ी कंपनियां का मोल हो बड़ा बड़ा है ना तो वह भट्ठे भी बाजार में देखेंगे भाई अट्ठे वो भरपूर माल आपने मिल जाए जी भट्ठे पे संपर्क करे
1: सही
0: छोटे छोटे कारीगर आऊ छोटा छोटा स्टार्टअप में बाऊ के भाई वो चीज थे बना के माने दो है ठीक है था नहीं था रोकड़ा देशा तो एक जगह काम हो गयो अब ऐ की हो गए छोटा छोटा उद्योग ग्रुप का मायने हुए ने भट्ठे तो लोग बाग आ जा अब एक जन है तो एक जन दूसरों तो कोई बड्डो चला के दावा को नहीं
1: सही है
0: और बिन खुद ने घूमना पड़ा के भाई माली चीज ले लो ते माली चीज ले लो
1: जब आप बिके को नहीं
0: हाँ,
1: अब वो लेनी हो अभी पोसाई भी को नहीं
0: हो पोसाई भी को नहीं हो
1: भाई जहाँ बड़ी कंपनियां इबा आसी तो बे ट्रकाओ माल उठा
0: ट्रकाओ माल उठा बिल्कुल
1: बंके भाई आवागमन को खर्चो भी थोड़ा बचो
0: तो कृष्णा भाई अब

0: एग्रीकल्चर इच्छो वो है कि इंक मायने थे कितो ही काम कर लियो जनसंख्या जैन जैन बढ़ेगी ने मैं खेती खेती जुड़ा जितना काम धंधा है चाहे वह पोल्ट्री फार्म हो चाहे डेयरी हो चाहे कुछ भी हो है ना बढ़ना ही बढ़ना है
1: भाई जे आप दूध है फल है सब्जी है एक तो जो मान लो का पान सीधी बेचा और सीधी नहीं बेच की जो दूध से भी अनेक प्रकार की मिठाई पनीर न जाने कितनी व्यंजन बने
0: बनी है
1: वह आप तैयार करके फिर बान पैकेजिंग करके फिर बेचा तो वो एक नए तरीको मैंने आप एक आय को अलग सोर्स बनी और फिर भी के बाद के मायने जी मान लो के शहद है जैम है आजकल देखो नई नई चीजा तो सगली चीजा ने अगर आप मान लो तरीके से बेचा तो आपने के पांच रुपए आए चुकी हो जाए बेरोजगारी है धीरे धीरे कर लो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो चर्चा तो देखो आप और भी कर चाहे अपने मन करे के आप एक शांति सी लोक रचना सुन
0: लो सुन लो
1: तो सुनाया शांति सी लोक रचना

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो तेजा भाई देखो के संदेश सुना, संदेश सु पहले पप्पू मस्ताना और साथ ही आवाज के मायने सांत्रिशी लोक रचना
3: सुना। वाह
2: और अब देखो के एक जानकारी अपन और देनी कि भाई जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है वो आपने जो खरीफ की फसल है बिकी तैयारी खातिर और नई रणनीति पर चर्चा कर 28 और 29 से 2 तारीख रखी है। आंक मायने नई दिल्ली के मायने पूसा को जुगु स्थान है। NASA कॉम्प्लेक्स के मायने कृषि सम्मेलन 2026 को आयोजन करे। तो ये आयोजन के मायने देखो के दो दिवसीय वो आयोजन है। एक मायने अध्यक्षता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान कर सी और सम्मेलन के मायने जितना भी राज्य है वहां सगला का कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय का जगह बड़ा बड़ा अफसर है वे और एक सागे सागे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जगह वैज्ञानिक ही बाने देखो बुलाया जा रहे सगला राज्य और सगला केंद्र शासित प्रदेश ही बांका मुख्य मुख्य जगह प्रतिनिधि बाने में आमंत्रित करें। और एक मुख्य उद्देश्य यो है कि भाई आड़नारी जिसकी खरीफ की अपनी फसल है बिक मैंने ज्यादा उत्पादन आप क्या ले सका बिकी रणनीति तैयार करनी। और अब जो मौसम है जिसको देखो बार बार बदल रही है तो जलवायु के अनुकूल आपने खेती करनी और प्राकृतिक खेती के मायने ज्यादा ध्यान देनो और जगह दलहन और तिलहन की जगह खेती है बिक के ऊपर भी आपने चुक त्रियासु ध्यान देनो और जोखिम जगह भी आपने प्रकृति के मायने आवे वहां को प्रबंधन क्या करा भी विषय के ऊपर चर्चा ये 2 दिन के सम्मेलन में करी जा सी। क्योंकि भाई कई की देखो के प्रकृति की सी समस्या ही जगह को आपा समाधान एकला कौन कर सका और आपा सरकार के ऊपर आश्रित हुआ और सरकार सु आपा के भाई कई जगह समस्याएं बांगे समाधान खातर जगह जोखिम अपनी करेड़ी कोई बीमा करेड़ी है बांके ऊपर आपा सरकार की और शास्त्री तो अपने वक्त को ऊपर मिले को नहीं तो ये की जकी भी समस्या ही वहां सगली समस्याओं को ऊपर इस सम्मेलन के मायने चर्चा करी जाए। और सम्मेलन को जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि भाई आपने टिकाऊ खेती करनी और टिकाऊ खेती के सागे सागे बुनियादी जगह ढांचा ही माने मजबूत करनो किसाना की आय आप के तरीके से बढ़ा सका इसके ऊपर विचार विमर्श करनो और समन्वित खेती करनी ताकि आपने कई बार के भाई कई बीज इच्छा हुए जगह चोखो उत्पादन दे जाए कई बीज जगह आप खेत के मायने आपने उत्पादन दे ही को नहीं। तो इस तरीके की आप खेती करा के भाई आप कोई सो भी जो नाज है आपने खेत के मायने जे चोखी फसल देने वालों तो वो

0: अपन उत्पादन दे सके। तो सगले विषय के ऊपर देखो के विचार विमर्श होती और खास तौर से अपना जगह किसान है वन आत्मनिर्भर बनाने को मुख्य काम है।
1: अच्छा,
0: भाई सरकार की ओर से जको सहयोग बन चाहे वो सरकार बन देसी, लेकिन उत्पादन के मायने कोई कमी नहीं आवे और वे आपके उत्पादन के सागे सागे आत्मनिर्भर बन सके, ये बात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा विचार करो जासी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अपना जका भी किसान भाई है माने देखो मोकड़ो फायदो होने की गुंजाइश है और इस सम्मेलन के मायने जका भी दिशा निर्देश दिया जासी और जका अफसर बैठ सी बांके बीच के मायने जकी वार्तालाप हो सी वह आपने जका एक एक किसान ही दूर दराज का वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आ किसानों के लिए बहुत ही सांतरी जानकारी है और तेजा भाई देखो के मन तो करो के बात भी आप और भी करता पने आपने कार्यक्रम को वक्त को पूरा हो इस खातिर ओजुम नेता ने किसने भाई ने
1: और तेजा भाई ने सीख दिलाओ करा
0: राम राम, राम, राम।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अभी किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं रफीक सागर और साथियों की आवाज में गाई ये राजस्थानी लोक।

राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी श्रोता सुन रहे थे सीमा मिश्रा और साथियों को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

गनी और सुप्रिया की आवाज में श्रोताओं, अभी आपने ये राजस्थानी लोक रचना सुनी। इस समय आप सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से ओनली ऑन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम के आखिर में एक बार फिर सीमा मिश्रा और साथियों को।

श्रोताओं, इस राजस्थानी लोक रचना के साथ कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आपकी सेवा में आकाशवाणी चुरू से बोल रहे हैं, FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाएंगे सोनू निगम और जसविंदर नरूला की आवाज। फिल्म का नाम दूल्हे राजा, गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलंद।

श्रोता भी सुन रहे थे अक्सर फिल्म का गीत आवाज थी हिमेश रेशमिया की, गीतकार समीर। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का

0: गीतकार समीर, संगीतकार जतिन ललित। श्रोताओं, अभी आपने कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, आकाशवाणी केंद्र चूरू से ओनली ऑन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

अंतरालों के पश्चात श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं इतिहास फिल्म का गीत। युगल आवाजें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा है समीर ने, संगीतकार दिलीप सेन।

अभी आपने मोहरा फिल्म का गीत सुना, आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। गीत लिखा था इंदी वर्णी, संगीतकार थे विज्जू साह। इस समय श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू केंद्र से फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता। प्रस्तुत है कार्यक्रम

श्रोता सुन रहे थे इश्कियां फिल्म का गीत, आवाज राहत फतेह अली खान की, गीतकार गुलजार, संगीतकार विशाल भारद्वाज। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का।

श्रोता फिल्म संगीत के आखिर में सुन रहे हैं फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये गीत, आवाज़ें कुमार सानू और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी केंद्र चूरू से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर रात्रि

0: गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की

0: हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया

वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निमहान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस अंतराल के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। श्रोता सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में लोक कलाकार मोहन राम चौधरी और साथ

0: लोक कलाकार मोहन राम चौधरी और साथियों को श्रोता सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में। अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले कार्यक्रम कंट्री वाइड। कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: कंट्री वाइड
2: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
2: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
3: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, इस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं, बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है या उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
3: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पे सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
2: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
3: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी लग रही है, या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी

0: ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ORS का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ORS का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है, क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें, क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
0: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा, जैसे मैंने बताया, नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं, और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें, जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए, हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी, दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, गर्भवती महिलाएं हैं इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें, जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकलें घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाएं, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आएं, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाएं, धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं, अगर धूप है उस समय तो छतरी का लें, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं।

0: ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
1: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के लोग ले सकते हैं। लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आए, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी, और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है। लेकिन गर्मी में ना जाए, और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं, तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
0: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
1: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ रहता है, गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
0: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
1: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें, तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटे नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं, तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
0: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का, और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना, और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना। ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
0: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Insights. This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion.

0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है प्रांतीय नाटक मेवाड़ की बेटी।
1: अब प्रस्तुत है एक नाटक निर्णय। निर्णय हम नहीं लेंगे बेटी, निर्णय तो आप ही को लेना है। पूरी राजपूत जाति का हित अहित सोचकर निर्णय आपको लेना है, और वो भी सुबह से पहले। ध्यान रहे, आप हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की बेटी हैं। मेवाड़ की बेटी।

आलेख श्री कृष्ण कुमार टिक्कू, निर्देशक श्री मदन शर्मा। तो सुनिए नाटक।

0: कितना सुंदर हो, पर तुम भला कितना सुंदर होगा।
1: अरे माँ,
0: दुष्ट कंजी,
1: तूने तो मुझे डरा ही दिया था।
0: मैं तो समझी थी कि माँ आ गई है ना, लेकिन माँ आ भी जाए तो क्या है, अपने मंगेतर का ही तो चित्र देख रही थी महारानी जी। और फिर अब तो विवाह में भी 4 ही दिन बचे हैं।
1: लेकिन हंसा, तू अभी से मुझे क्यों महारानी कह रही है?
0: क्यों ना कहूँ? याद है जब जयपुर के राज पुरोहित ने आपकी गोद भरी थी तब क्या कहा था?
1: क्यों कहा था?
0: आयुष्मान भव, राजकुमारी जी आपका विवाह जयपुर के श्रेष्ठ महाराज मान सिंह जी के साथ 2 माह बाद होगा, किंतु आप इसी क्षण से स्वयं को जयपुर की महारानी समझे। और राणा जी, अब ये मेवाड़ की राजकुमारी नहीं, जयपुर की महारानी के रूप में आपके पास हमारी अमानत है। 2 माह बाद हम जयपुर नरेश की बारात लेकर आपसे अपनी अमानत लेने आएंगे।
1: अरे वाह हंसा वाह, तुझे तो कोई अभिनेत्री होना चाहिए था।
0: हाँ, अभिनेत्री ही बन जाऊंगी। और जयपुर वाले अपनी महारानी को ले जाएंगे तो हंसा का क्या काम रह जाएगा यहाँ पर? हाँ, अभी नहीं करके ही पेट पालना पड़ेगा मुझे अब।
1: तू कहे तो तेरे लिए भी कोई जयपुर वाला दूल्हा ही ढूंढ दूँ, फिर सदा ही मेरे साथ रहना।
0: क्यों जी, दूल्हा मिल जाएगा तो फिर हम आपके साथ क्यों रहेंगे भला? हम अपने दूल्हे के साथ नहीं रहेंगे क्या?

0: हम हाजिर हो सकते हैं महारानी जी?
1: भला मेवाड़ नरेश को भी अपने महलों में आने के लिए किसी की आज्ञा लेनी पड़ती है?
0: मेवाड़ नरेश तो हम हैं ही, लेकिन अपनी रानी के महलों में तो हम सिर्फ एक प्रेमी पुजारी ही हैं। अब देवी की आज्ञा के बिना भला पुजारी कैसे अंदर आ सकता है?
1: लगता है आज आप ठिठोली करने पधारे हैं यहाँ। किंतु हमें अभी संध्या पूजन को जाना है भगवान एकलिंगनाथ के मंदिर में।
0: वो तो हम आपके हाथ में पूजा का थाल देखकर ही समझ गए थे रानी जी। हम तो ये कहने आए थे कि आज हमने कृष्णा को देखा तो दंग रह गए। आपने तो हल्दी चढ़ा चढ़ाकर हमारी बेटी को साक्षात वसंत ऋतु सा कर दिया है।
1: सच कह रहे हैं आप, कुंदन सी धमकने लगी है हमारी कृष्णा। जयपुर नरेश उसे देखेंगे तो स्वयं अपने भाग्य पर आश्चर्य करेंगे। राणा जी, दिन में 4 बार उसकी नजर उतारती हूँ मैं।
0: अच्छा, एक बात कहें हम आपसे?
1: कहिए ना।
0: कृष्णा को देखकर हमें वो दिन याद आ गया जब हमने पहली बार अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया था। बिल्कुल आप पर गई है आपकी बेटी।
1: फिर शुरू कर दी आपने ठिठोली।
0: अच्छा, नहीं करते ठिठोली।
2: हुजूर, महामंत्री जी पधारे हैं, कहनवाया है इसी समय हुजूर के दर्शन करना आवश्यक है।
1: महामंत्री जी इस समय?
0: विवाह की तैयारी में ही कुछ बात करनी होगी।

0: अब चार ही तो दिन शेष बचे हैं, कल से तो अतिथियों का आना भी शुरू हो जाएगा। सेवक,
1: आज्ञा महाराज।
0: तुम महामंत्री जी को भीतर भेज दो।
1: जो आज्ञा।
0: आप भी कुछ देर यहीं रुक जाइए महारानी जी, संभव है आपसे भी कोई परामर्श लेना हो।
2: मेवाड़ शिरोमणि की जय हो।
0: आइए महामंत्री।
2: प्रणाम स्वीकार करें महारानी जी।
3: आसन ग्रहण कीजिए महामंत्री जी।
2: आप कदाचित मंदिर पधार रही हैं।
3: हाँ, किंतु अभी समय है, आप चाहे तो अपनी बात कह सकते हैं।
2: जो आज्ञा। राणा जी, मैं
0: क्या बात है अजीत, तुम कुछ घबराए से हो।
2: अन्नदाता, बड़ा अशुभ समाचार है।
0: क्या? शीघ्र कहो अजीत, क्या हुआ है?
2: अन्नदाता, जयपुर नरेश।
0: क्या हुआ है जयपुर नरेश को?
2: अन्नदाता, जयपुर नरेश नहीं रहे।
3: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: ये तुम क्या कह रहे हो अजीत? क्या मानसी जी?
2: अन्नदाता, अभी जयपुर से दूत आया है। कुछ दिनों से जयपुर नरेश बीमार थे और कल रात अचानक ही।
3: हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर डाला तूने? ये दुख मेरे कृष्णा कैसे सह पाएगी? अब क्या होगा?
0: स्वयं को संभालिए रानी जी।
3: कैसे संभालो, घर में हल्दी चढ़ी बेटी बैठी, चार दिन बाद विवाह का लग्न है, ऐसे समय में ये बच बात। मैं
0: ये समय रोने का नहीं महारानी, ये समय है विचार करने का। सेवक, ये नगाड़े और शहनाइयां बंद करवा दो, महलों पर सजावट की सारी रोशनियां बुझवा दो, जनाने महलों में कहलवा दो कि ये गीत नृत्य सब बंद कर दिए जाए। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया अजीत।
2: आपका दुख मैं ही समझ रहा हूं। राणा जी, ये आप ही का कलेजा है ये वज्रपात झेल कर भी आप अपना धैर्य बनाए हुए हैं।
0: और हम कर भी क्या सकते हैं?
3: किंतु राणा जी, एक और कठिन समस्या है।
0: एक नहीं, अब तो समस्याएं ही समस्याएं हैं हमारे सामने।
3: आप समझे नहीं, बेटी को हल्दी चढ़ चुकी है, अब उसे घर में बिठाए नहीं रखा जा सकता। विवाह का जो मुहूर्त है उस पर उसका विवाह करना ही होगा।
0: क्या कह रही हैं आप?
3: आपके कुल की यही रीत है राणा जी, एक बार हल्दी चढ़ जाने पर लड़की का विवाह निश्चित मुहूर्त पर करना होता है। हल्दी चढ़ी बेटी पिता के घर नहीं रह सकती।
0: किंतु रानी जी, लग्न में तो केवल चार दिन शेष है, इतने कम समय में हम राजकुमारी के लिए योग्य वर कहां से लाएंगे?
2: अन्नदाता, आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करूं।
0: आप भी कुछ सलाह दीजिए मंत्री जी, हमारी तो समझ में नहीं आता कि अब क्या करें।
2: अन्नदाता, राजकुमारी जी के लिए जयपुर के अलावा जोधपुर नरेश का भी तो प्रस्ताव आया था।
0: हाँ, राजा मकरंद सिंह
2: जी।
0: हाँ, उनका भी प्रस्ताव आया था, बल्कि वे तो इस संबंध के लिए बहुत उत्सुक भी थे।
2: और जयपुर नरेश का प्रस्ताव मिलने के बाद आपने अभी तक जोधपुर नरेश को हाँ या नहीं का कोई भी जवाब नहीं दिया।
0: हाँ
2: अन्नदाता, इस समय वही आपकी समस्या का समाधान है।
0: आपका मतलब है कि?
2: हाँ मेवाड़ शिरोमणि, जयपुर के बाद जोधपुर से अच्छा कोई संबंध राजकुमारी और मेवाड़ के लिए नहीं हो सकता।
0: तुम ठीक कहते हो अजीत सिंह, आपका क्या विचार है महारानी जी?
3: हाँ, यही उचित होगा।

0: आपने तो हमें उबार लिया मंत्री जी।
1: महामंत्री जी, हमारा पत्र लेकर दूत को जोधपुर रवाना करो। हम राजा मकरंद सिंह को बारात लेकर निश्चित मुहूर्त पर पहुंचने का निमंत्रण भेजेंगे। राजाओं की तैयारी में समय नहीं लगता। दूत से कहना रातों रात हमारा पत्र जोधपुर नरेश तक पहुंचाए और उनका जवाब लेकर कल तक यहां वापस लौटे।
2: जो आज्ञा अन्नदाता, आप पत्र लिखिए, मैं सब प्रबंध करके लौटता हूं।

0: मंत्री जी।
1: जी महाराज।
0: आश्चर्य तो होगा जोधपुर नरेश को ये देखकर कि हम स्वयं नगर की सीमा पर उनकी बारात के स्वागत को आए हैं।
1: ऐसा करके आपने उनका सम्मान बढ़ाया है महाराज, वे निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगे।
0: लगता है बारात आ गई है अजी।
1: जी हाँ महाराज, वो उधर घुड़सवार नजर आने लगे हैं महाराज।
0: स्वागत की तैयारी तो सब हो गई है ना?
1: आप निश्चिंत रहिए अन्नदाता।
0: ये तो बारात नहीं कोई सेना नजर आती है अजीत। भला जोधपुर नरेश
1: ये मुझे भ्रम हो रहा है या
0: क्यों? क्या हुआ अजीत?
1: इन सैनिकों के सिर पर जोधपुरी स्टाफ भी नहीं है राणा जी। ये तो
0: हमने ध्यान ही नहीं दिया था अजीत।
1: जी महाराज,
0: ये साफे तो जयपुर रियासत की पहचान है।
1: ये निश्चय ही जयपुर रियासत की सेना है राणा जी।
0: जयपुर की सेना? लेकिन क्यों?
1: वो देखिए एक हाथी पर जयपुर राजवंश का ध्वज भी लगा है राणा जी। इसका मतलब है कि स्वर्गीय मान सिंह जी के छोटे भाई और अब जयपुर नरेश राजा मुकुंद सिंह जी स्वयं भी सेना के साथ तैयार रहे हैं।
0: लेकिन उन्हें तो हमने निमंत्रण भी नहीं भेजा था।
1: फिर कुछ घुड़सवार इधर भी आ रहे हैं राणा जी, और सबके आगे स्वयं जयपुर के दीवान जी है।
0: जाने क्या इच्छा है भगवान एकलिंग नाथ की। आप आगे जाकर दीवान जी का स्वागत कीजिए और उन्हें यहीं हमारे खेमे में ले आइए।
1: जो आज्ञा राणा जी।
0: और जब भी जोधपुर वालों की बारात पहुंचे आप उनका स्वागत करें, उनके यहीं विश्राम का प्रबंध करें और हमें तुरंत सूचना दें।
1: जो आज्ञा अन्नदाता।
2: जयपुर के दीवान का प्रणाम स्वीकार करें मेवाड़ नरेश।
0: पधारिए, मेवाड़ में आपका स्वागत है।
2: मैं जयपुर महाराज का एक आवश्यक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ राणा जी।
0: आपको जो भी कहना हो शीघ्र कहिए दीवान जी। जोधपुर नरेश की बारात भी किसी भी क्षण आ सकती है।
2: उस बारात को वापस लौटा दीजिए मेवाड़ नरेश।
0: क्या कह रहे हैं आप?
2: जयपुर नरेश का यही संदेश है कि आप जोधपुर वालों की बारात वापस लौटा दीजिए।
0: बारात वापस लौटा दे? हमसे यह कहने का साहस कैसे हुआ आपका? आपके राजा को हमारे परिवार के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है?
2: ये अधिकार आप ही ने जयपुर नरेश को दिया है हुकुम।
0: हमने अधिकार दिया है? हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं दीवान जी।
2: आप अगर क्रोध छोड़कर शांति से मेरी बात सुनें तो सब समझ जाएंगे। फिर आप स्वयं ही फैसला कीजिएगा कि आपको जोधपुर की बारात लौटानी चाहिए या नहीं।
0: लेकिन आप कुछ कहिए तो सही।
2: अर्ज करता हूँ, राजकुमारी कृष्णा का संबंध आपने जयपुर नरेश मानसिंह जी से किया। हमारे राजपुरोहित ने स्वयं आकर उनकी गोद भरी और उन्हें जयपुर की महारानी घोषित किया। ठीक है ना राणा जी?
0: ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन मानसिंह जी के स्वर्गवास के बाद इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
2: अर्थ क्यों नहीं रह जाता राणा जी? रियासतों के विवाह संबंध व्यक्तियों के बीच नहीं, दो राजघरानों के बीच होते हैं, दो रियासतों के बीच होते हैं। राजा मानसिंह के निधन से जयपुर की राजगद्दी सूनी नहीं हो गई। आज राजा मुकुंद सिंह जयपुर नरेश हैं और अपने राजपुरोहित के वचनों के अनुसार निश्चित लग्न मुहूर्त पर जयपुर की महारानी

0: जो आपके पास हमारी अमानत है लेने आए हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं राणा जी?
1: लेकिन लेकिन हमने जो जोधपुर नरेश को निमंत्रण देकर बुलावा भेजा है,
0: क्षमा चाहता हूं, ये आपकी गलती थी। हम भी जानते हैं कि हल्दी चढ़ी राजपूत कन्या पिता के घर नहीं रह सकती। हम भी क्षत्रिय हैं, इसीलिए राजा मान सिंह की मृत्यु के शोक के बावजूद सही मुहूर्त पर बारात लेकर आए हैं।
1: कलिंगनाथ, अब क्या होगा?
0: जयपुर नरेश की बारात खाली हाथ नहीं लौटेगी। हमारी महारानी को हमारे सामने आप किसी और को सौंपें, इससे पहले मेवाड़ की धरती को अपने ही पुत्रों के खून से नहाना होगा। आपकी बेटी जयपुर की इज्जत है और इसकी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा, चाहे वह किसी का भी हो। मैं अब आज्ञा चाहूंगा मेवाड़ नरेश। लग्न का समय कल रात का है, तब तक हमारी सेना आपके नगर की सीमा से बाहर यहीं रहेगी। आशा है आप मेरे निवेदन पर विचार कर कल सुबह तक हमें अपना जवाब भिजवा देंगे।

0: जोधपुर की बारात आ गई है महाराज। जोधपुर की बारात आ गई है।
1: हाँ हाँ हाँ सुनो अजीत।
0: जी महाराज।
1: तुम बारात के यही ठहरने का प्रबंध करो। कह दो नगर प्रवेश का कल सुबह से पहले अच्छा मुहूर्त नहीं है, हम महलों में जा रहे हैं, तुम वहीं आओ।
0: जो आज्ञा महाराज।

0: अब क्या होगा राणा जी? हे प्रभु, ये कैसा संकट आ पड़ा है हम पर। इधर जोधपुर की बारात तैयार खड़ी है, उधर जयपुर की सेना। अब हम क्या करें? आप ही कुछ कहिए ना मंत्री जी।
1: मैं क्या कहूँ महारानी जी, मैंने तो जोधपुर और जयपुर दोनों ही राजाओं के हाथ जोड़कर अपनी व्यवस्था बताई, पर दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं। जोधपुर नरेश कहते हैं कि स्वयं महाराजा ने उन्हें विवाह का निमंत्रण देकर बुलाया। अब उनकी चढ़ी बारात के सामने कोई दूसरा मेवाड़ की राजकुमारी को ब्याह कर ले जाए, इससे पहले उनका हर सिपाही अपना सिर कटा देगा। वे यहां से लौटेंगे तो राजकुमारी को लेकर, अन्यथा लाशों का ढेर लग जाएगा। यही जिद जयपुर नरेश की भी है।
0: लेकिन मैं अपनी एक बेटी को दो बारातों में कैसे बांटूं? आप कुछ क्यों नहीं बोलते राणा जी? कल किसे और क्या जवाब देंगे आप?
1: जवाब? हाँ, जवाब तो देना ही पड़ेगा। सेवक,
2: आदिमान दादा,
1: राजकुमारी को संदेश भेजो कि हम इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं।
2: जो आ गया हूं।
0: आप कृष्णा को बुलवा रहे हैं?
1: हाँ रानी जी, अब हमें क्या करना है इसका फैसला कृष्णा ही करेगी। आओ बेटी।
0: यहाँ आओ बेटी। अरे, माता जी और मंत्री काका भी यही है। खमंगन
1: जीती रही है राजकुमारी जी।
0: मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी?
1: बेटी, आज तुम्हें आज्ञा देने नहीं, एक गंभीर समस्या पर तुम्हारी सलाह लेने को बुलाया है। ये केवल हमारे परिवार ही नहीं, पूरे मेवाड़ और पूरी राजपूत जाति के लिए संकट की घड़ी है। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो और फिर बताओ कि हमें क्या करना है।
0: जी पिताजी।
1: सुनो बेटी, हमने जब जयपुर से आपके विवाह का प्रस्ताव

0: साव स्वीकार किया था तब ये सोचा था कि आपको तो अच्छा वर और घर मिलेगा ही, साथ ही मेवाड़ पर छाए संकट के बादल भी छट जाएंगे।
1: मेवाड़ पर संकट?
0: हाँ बेटी, मुगलों से लड़ते लड़ते मेवाड़ अंदर ही अंदर इतना जर्जर हो चुका है कि हमारी पड़ोसी रियासतें भी हम पर गिद्ध दृष्टि डालने लगी थी। हमारी बची खुची सेना बहुत दिनों तक मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, किंतु यदि जयपुर जैसी ताकतवर रियासत से हमारे संबंध हो जाते तो फिर किसी का हमारी ओर आंख उठाने का साहस भी नहीं होता।
1: ये तो आपने ठीक ही विचार किया पिताजी।
0: पर ऐसा हुआ नहीं। विवाह के 4 दिन पूर्व मान सिंह जी का स्वर्गवास हो गया।
1: क्या?
0: और कुल की रीत निभाने के लिए हमें आपके विवाह का निमंत्रण जोधपुर नरेश को भिजवाना पड़ा।

0: अब स्थिति यह है कि मेवाड़ की राजकुमारी एक है और उनसे ब्याहने को दो बाराते दरवाजे पर खड़ी हैं। कल तुम्हारा लग्न है और कल सुबह हमें उनमें से एक को बारात नगर में लाने को आमंत्रित करना है। हम चाहे जयपुर वालों को न्योते या जोधपुर वालों को, ये निश्चित है कि ये धरती राजपूतों के रक्त से स्नान करेगी। तीनों ही रियासतों के सैकड़ों राजपूतों की लाशों का ढेर लग जाएगा। यहां से तुम्हारी डोली जो भी ले जाएगा उसे अपनी ही कौम के खून की भरी दलदल से होकर गुजरना पड़ेगा। हजारों राजपूत बालाएं विधवा हो जाएंगी तुम्हारी मांग के सिंदूर के लिए। असंख्य बच्चे अनाथ हो जाएंगे तुम्हारा घर बसाने के लिए। और मेवाड़ का क्या होगा फिर?
1: नहीं नहीं पिताजी नहीं, यदि मेरे विवाह मंडप में मंगल गीतों की जगह विधवाओं का क्रंदन गूंजे, यदि मेरी डोली हजारों वीर राजपूतों की लाशों को लांग कर गुजरे, तो धिक्कार है ऐसे विवाह पर। सिर्फ मेरे कारण इतना विनाश? नहीं नहीं पिताजी, नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप तुम्हें राजाओं से कह दीजिए कि मैं विवाह ही नहीं करूंगी।
0: बेटी, ये भी तो संभव नहीं है। अब हल्दी चढ़ी कन्या घर में बैठी है और दरवाजे पर बारात खड़ी हो तो विवाह नहीं चलेगा। हम कहें भी तो वे नहीं मानेंगे।
1: फिर क्या निर्णय लेंगे आप?
0: निर्णय हम नहीं लेंगे बेटी, निर्णय तो आप ही को लेना है। पूरी राजपूत जाति का हित अहित सोचकर निर्णय आपको लेना है। ध्यान रहे, आप हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की बेटी है। मेवाड़ की बेटी

0: अरे इतने चिंतित क्यों हो राजकुमारी?
1: हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तू मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे हमसा। अच्छा घंटे भर बाद आना।
0: जो आज्ञा।
2: हम चाहे जयपुर वालों को न्योते या जोधपुर वालों को, ये निश्चित है कि ये धरती राजपूतों के रक्त से स्नान करेगी।

थैंक यू भी वादी करती इसी कारण मेरे कर्म सैकड़ों विधवाए और सैकड़ों अनाथ मेरी मांगे सिंधु नहीं हजारों हजारों राजपूतों का

0: पहले मुझे ही लेना होगा। राणा जी सुबह होने ही वाली है।
1: हाँ अन्नदाता, कुछ न कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा आपको।
2: निर्णय तो राजकुमारी ने ले ही लिया होगा।
0: राजकुमारी ने बीच पीकर प्राण दे दिए। नहीं, मेरी बेटी डोली की जगह चढ़ा पे चढ़ेगी। नहीं, अब खामोश खड़े हैं, कुछ तो बोलिए।
2: रोना बंद कीजिए रानी जी, आपकी बेटी ने, मेवाड़ की बेटी ने अपना बलिदान देकर राजपूतों के गौरवमय इतिहास को गंगा की पवित्रता दी है। धैर्य रखिए रानी। अजीत सिंह, आप क्या मेवाड़ रहे, आप अभी जाकर जयपुर और जोधपुर नरेशों को स्वयं ये कहिए कि हमारी बेटी के विवाह मंडप में तो हम उनमें से किसी को भी नहीं बुला सकते अब, किंतु हमारी बेटी के अंतिम संस्कार में वे दोनों ही आमंत्रित हैं। जाइए, अब मेवाड़ की धरती खून से नहीं नहाएगी।

0: मेवाड़ की बेटी। अभी आप श्री कृष्ण कुमार टिक्कू का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। इसके निर्देशक थे श्री मदन शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे श्री दीपक जोशी, श्रीमती पूनम फू, श्री रमेश सनाधे, श्री अतुल्य कीर्ति व्यास, श्री राजेश चड्ढा, कुमारी करुणा कुमावत और श्रीमती ममता सुखवाल।
1: इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5।

ये आकाशवाणी का चुर केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के ठीक 10:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल गायक पंकज उदास की गायक कुछ गैर फिल्म।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने पंकज उदास की गाए कुछ गैर फिल्मी गजलें सुनी। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के

0: सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।